सबसे अपना वाला, सबसे प्यारा वाला मी टाइम होता है ये, जो भी हमें अच्छा लगता है, चाय, कॉफ़ी, गर्म पानी या फिर सिर्फ ऐसे ही आपने जो गमले में पौधा लगाया है उसको देखते देखते कब समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पर ये सारी की सारी चीज़ों का ना थोड़ा सा एहसास ज़रूर करिएगा जो हम बता रहे हैं, क्योंकि कई बार जो सुबह की नींद होती है वो इतनी पक्की होती है कि उठने का मन ही नहीं करता, लगता है कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ये सारी की सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। अगर भोर सुहानी बनानी है तो आपको थोड़ा सा टाइम इस भोर को देना होगा, उठ के देखिए तो सही, अच्छा लगेगा आपको। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे भोर सुहानी है ये। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 5:37 और ठीक 4 सेकेंड। अलार्म बजा आपका, अगर आपने उसको बंद कर दिया है तो शायद फिर से बजने वाला है।

जहां मीठी हो सबकी जबान, नफरतों के इस जहान में हम प्यार के मौसम को यूं ही बरकरार रखेंगे। भोर सुहानी, आपको कैसा लगा? आप हमें मेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com और बता सकते हैं। फिलहाल तो उठने का समय हो गया है, क्योंकि ये हवाएं कहती हैं कि भाई आइए तो सही, हमारा दीदार करिए, देखिए तो सही कि हम मई के महीने में कितने फ्रेश लगते हैं और कितने ठंडे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है।

दिन शुरू हुआ तो मोहब्बत की नहीं एक दास्तां लंबे चौड़े कामों की भी शुरू हो जाएगी, ये ही होता है। तो जो आपने लिस्ट बनाई थी कल, वो हो सकता है कि आज आपको काम आ जाए और इसके अलावा और भी कई सारी नई नई चीज़ें जुड़ जाएंगी। लेकिन वो वाला टाइम जिसको मैंने कहा था मी टाइम, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जो भी आप सोचना चाहते हैं, दिन को पूरा प्लान बनाना चाहते हैं, वो सारी बातें अभी बड़े आराम से हो सकती हैं लंबी सी सांस लेते हुए। और मुस्कुराहट की जहाँ तक बात है, अब आप हमें सुनते रहेंगे तो मुस्कुराहट तो अपने आप आ ही जाएगी। क्या पता कोई ना कोई आवाज़ ऐसी आए आपको आसपास जो लगे कि हाँ बड़ी प्यारी सी है, जानी पहचानी सी है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026 सुबह के 5:53 और ठीक 33 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:10 पे आप सुन सकेंगे अर्पण, जो लेकर के आएंगी पूजा कपूर, और उसके बाद 9:00 म्यूजिकल दिल्ली में आपका साथ रहेगा रेखा रानी के साथ, और आज 11:00 तस्वीर में वो आपको ले जाएंगी एक सुदूर पूर्व, एक बहुत ही प्यारी सी जगह जिसका नाम है लाचेन। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे, और उसके बाद कलाकार बेमिसाल में अंजलि होंगी आपके साथ कैफी आज़मी के बातों के साथ, उनके गीतों के साथ बताएंगी सब कुछ, तो सुनना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। FM गोल्ड का साथ आपके साथ यूं ही बना रहेगा, और इसके अलावा एक कदम बुजुर्गों की ओर 12:10 पे स्पेशल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन हमारा होता है, इसको सुनना भी आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि 3:10 पे रिक्वेस्ट शो होगा मन भावन, और रिक्वेस्ट शो से मुझे याद आया दिल का मेल बॉक्स भी आप ट्यून कीजिएगा, जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं, और कौन कौन सी गाने हैं, क्या चीज़ें हैं, वो अपनी राय आप fmgold@gmail.com पे बता सकते हैं। 5:10 पे पानी पर लिखी कहानी कजली होगी, आलेख इंदिरा डांगी का होगा, तो ये भी आप सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता लेकर के आएंगी हमारी साथी देविका दत्ता, सदाबहार गीत होंगे 6:10 पे, और इसके अलावा मार्केट मंत्रा भी आप सुन पाएंगे, और इसके अलावा बहुत से अन्य कार्यक्रम हैं जो आप FM गोल्ड चैनल पे

लगातार सुन सकते हैं, तो इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और प्रोग्राम्स हमारे सुनते रहिए। थोड़ी देर में बजेंगे 6 जो समय है समाचारों का, और आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और आज आपका दिन बेहद शानदार तरीके से बीते, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सुप्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia. India and Vietnam have discussed to deepen cooperation in emerging technologies, innovation, research and startup ecosystems. Minister of State for Science and Technology, Jitendra Singh, held bilateral talks with his Vietnamese counterpart, Dr. Vu Hai Huang, in New Delhi yesterday. During the discussions, both sides exchanged views on cooperation in artificial intelligence missions, cybersecurity frameworks, innovation ecosystems and technology transfer initiatives. The meeting also reviewed ongoing academic and institutional engagements between the two countries, including collaborations involving research institutions, innovation hubs and technology incubation platforms. Addressing the meeting, Dr. Singh said that the comprehensive strategic partnership between the two countries has gained new momentum over the last decade. He said that around 10 researchers from Vietnam have availed fellowships under the India-ASEAN Research and Training Fellowship Program. Foreign Secretary Vikram Misri took part in a trilateral meeting between India, France and United Arab Emirates in Abu Dhabi yesterday, along with Reem Al Hashmi, Minister of State and Special Envoy for India, and Martin Bryans, Secretary General of the Ministry for Europe and Foreign Affairs of France. The Ministry of External Affairs said the three countries agreed to strengthen their partnership and work on a roadmap with clear timelines. During the visit, Mr. Misri also met Khaldun Al Mubarak, Managing Director and Chief Executive Officer, Mubadala Investment Company, to discuss investment cooperation. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, the two U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation known as Project Freedom before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible. Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause

मोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन करें।

श्री रघुबीर भक्त हितकारी सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और नहीं होई। साथियों तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि जीवन में प्रकाश चाहिए तो फिर राम नाम को अपने हृदय में दीपक की तरह जला कर रखो। 6:22 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर यह है श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण।

साथियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री राम के भरोसे रहता है वह निडर होकर जीवन जीता है, उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होती और जो होना है निश्चित है वही होकर रहता है। 6:30 और 7 सेकंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और गोल्ड स्टूडियो से आज एक साथ मिलकर उस परम शक्ति को नमन और वंदन कर रही हूँ। आपके साथ मैं आपके रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जाने कितने लोग मिले दुनिया के इस मेले में, जाने कितने लोग मिले दुनिया के इस मेले में, लेकिन बस तुम ही याद रहे जब बैठे कभी अकेले में। कहते हैं ना कि अगर प्रभु प्राप्ति के लिए आपकी भावना तीव्र है तो प्रभु की कृपा से जीवन में भक्ति स्वयमेव जागृत हो जाती है। और वैसे भी भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है।

जानी राम सेवा सरस समझ करब अनुमान, पुरुषा ते सेवक भय हरते भे अनुमान। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की सेवा को परम आनंदमय जानकर ब्रह्मा जी जामवंत बने और भगवान शिव हनुमान। इससे समझ लो कि प्रभु की सेवा और प्रेम कितना महान है।

6:44 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और साथियों, अर्पण में अब समय हो रहा है रामचरितमानस के सुंदर संगीतमय पाठ का। तो आइए मिलकर एक साथ श्रवण करते हैं इस सुंदर संगीतमय पाठ को।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदिदेव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से ये सुंदर संगीतमय पाठ। आज जो प्रसंग आपने सुना इसे बालकांड से लिया गया था और अब समय हो रहा है कार्यक्रम अर्पण से आज्ञा लेने का, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे और उसके बाद 7:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात में। तब तक के लिए मुझे यानी अपने रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। 2 अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the Legislative Party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes in the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today till May 10th during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier, put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department said the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, Coastal Karnataka and Rayalaseema today. And that is the end of this news bulletin.

भाई ये मीठी मीठी आवाज तो लता जी की थी, आपने पहचान ही लिया होगा। और फिल्म है कैदी नंबर वन, जो कि आई थी 1959 में, जो दरअसल एक क्राइम ड्रामा थी। और इसमें लीड रोल्स में थे शेख मुख्तार, नंदा और महमूद। चलिए ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन बात अगर मीठी मीठी बातों की करें तो फिर मीठी बानी बोलना तो बहुत अच्छा होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मीठी मीठी और लच्छेदार बातों में फंसा कर अगर कोई किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करे तो फिर ऐसी कोशिश में आप मत रहिएगा जनाब, क्योंकि हर रिश्ता बचाना उतना ज़रूरी नहीं होता, खासकर तब जब सामने वाला उसमें से जाने को बेताब हो। वेल, सोचने की बात है, आज सोच कर देखिएगा इस बात पर थोड़ा सा। फिलहाल हम अगर बात करें म्यूजिक की और आकाशवाणी एफएम गोल्ड की, तो वो आपके साथ रहता है हमेशा 24 घंटे। और इसी तरह के खूबसूरत गाने हम हमेशा लेकर आते हैं अपने हर प्रोग्राम में आपके लिए। फिलहाल वक्त हुआ है 7:21 और एक और खूबसूरत गाना मेरे पास है जो आपके लिए यहाँ प्ले कर रही हूँ इस वक्त, आशा दाई की आवाज़ में। पहचानिएगा फिल्म कौन सी है।

7:25 और 12 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर, ये है आपका फेवरेट शो गोल्ड सुप्रभात और गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और मैंने आपसे पूछा था कि आशा ताई की आवाज में कि गाना आपने पहचाना। वेल, पहचान तो बहुत लोगों ने लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1961 में आई थी फिल्म भाभी की चूड़ियां, जिसमें से ये गाना आपने सुना। और ये एक सुपरहिट क्लासिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिकाओं में थे मीना कुमारी और बलराज साहनी। और ये भी एक मराठी फिल्म वाहिनीच्या बांगण्या का रीमेक थी। और बहुत ही प्यारा गाना जो बहुत कम सुनाई देता है वो अभी हमने सुना 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। और आज दिन में आप और क्या क्या सुन पाएंगे चलिए आपको जल्दी से ये बता दूं। तो 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली के पहले सेगमेंट में आपके साथ रहूंगी मैं, और हम बात करेंगे यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में जो कि मनाया जा रहा है 8 से 12 मई के बीच। और 9:10 पर म्यूजिकल दिल्ली के दूसरे सेगमेंट में रेखा होंगी आपके साथ, जो बात करेंगी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के बारे में और भी बहुत सी बातें आपके साथ करेंगी। 10:30 का समय रहेगा दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर प्रोग्राम तस्वीर में आज हम आपको सिक्किम में लाचेन की सैर पर लेकर चलेंगे। 12:10 पर एक कदम बुजुर्गों की ओर। 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में आज गीतकार कैफी आजमी साहब के बारे में जानेंगे। और 2:30 से 3 आप सुनेंगे प्रोग्राम उन्नत किसान, जिसमें आज का विषय रहेगा खाद्य पदार्थों का मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक लाभ, और इसमें शामिल होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर श्रुति सेठी जो प्रधान वैज्ञानिक है पूसा संस्थान नई दिल्ली में। 3:10 पर आप सुनेंगे मन भावन। 4:30 परिक्रमा। 6:30 का समय रहेगा मार्केट मंत्रा का। 7:25 पर शाम को आप सुनेंगे सांझ ढले। 8:10 पर मधुरिमा। 10:30 हरसिंगार। और 11:10 पर आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आप सुनेंगे विशेष रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। और इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत। आज के मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हवा की गति रहेगी करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटा और एक खूबसूरत गाना आपकी तरफ बढ़ रहा है, और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत भी ले रही हूं। लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ, क्योंकि इसके बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे और उसके बाद समाचार बुलेटिन के उस पार आपसे फिर मुलाकात होगी 8:45 पर म्यूजिकल दिल्ली में। तब तक के लिए अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर। कार्यक्रम आज सवेरे में समय है 7:30 और आज की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का जिसका नाम है आज सवेरे। और आज के अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा, स्वागत है आपका भी।
1: नमस्कार एंड हेलो निखिल, वी वेलकम ऑल आवर लिसनर्स टू जॉइन इन फॉर अनदर ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ आज सवेरे। So friends, stay with us and enjoy the program. For starters, Nikhil, we have some news headlines for them.
0: बिल्कुल। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
1: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the governor Vishwanath Arlekar had demanded from them.
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई।
1: The Directorate of General of Training, DGT, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will host a high-level industry consultation today at the National Skill Training Institute, Kanpur, Uttar Pradesh. The ministry said that the event marks a pivotal moment in India's pursuit of a globally competitive aerospace skills ecosystem. It will bring together more than 30 senior industry leaders, CEOs and policy experts under one roof to deliberate on the establishment of a national center.
0: इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि इस सहयोग के तहत दोनों संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के लिए अपनी क्षमताओं के साथ साथ परिषद की चिकित्सा अनुसंधान विशेषज्ञता का लाभ भी उठाएंगे।
1: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge, but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रांस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की है। यात्रा के दौरान श्री मिश्री ने निवेश सहयोग के बारे में संयुक्त अरब अमीरात की निवेश कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से भी भेंट की।
1: In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 PM.
0: आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन पर ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती के कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले रहे हैं।

0: अश्वतों, समय है अब प्रमुख महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो सुभद्रा, क्या समाचार है आपके पास?
1: यस, स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई, अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कोयंबटूर कैरिड आउट एन एनफोर्समेंट सर्च एंड सीजर रेड ऑपरेशन यस्टरडे एट पुदुकोटाई बेस्ड ऑन एन इन्फॉर्मेशन ऑफ सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ द BIS एक्ट। द ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय अ टीम ऑफ BIS ऑफिशियल्स कंप्राइजिंग ए अरिवारगन, जॉइंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिशियल्स। 654 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी वर्थ अप्रॉक्सिमेटली रुपीज 92 लाख which did not bear the hallmark unique identification 6-digit alphanumeric number were found and exhibited for sale, as gold jewelry must be hallmarked with HUID before being exhibited for sale. The items were seized.
0: दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कल पुनर्निर्मित नेहरू प्लेस डाकघर भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डाकघर अब बैंकिंग और बचत सुविधाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब डाकघरों में बैंकिंग, बचत योजनाएं, आधार सेवाएं, पासपोर्ट सेवाएं और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह नालियों और जलाशयों में लार्वा रोधी दवा का छिड़काव भी हो रहा है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। लोगों से अपील की गई है खुले पानी के बर्तनों को ढककर रखें और टंकियों को अच्छे से बंद करें। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले शाम 7 बजे से IPL मुकाबले के चलते राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि पार्किंग के लिए माता सुंदरी, वेलोड्रोम रोड और राजघाट मार्ग का ही उपयोग करें। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा आज से 14 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर NSD के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने बताया कि NSD द्वारा आयोजित इस समारोह के लिए रंग प्रेमियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुखर्जी नगर से जीवन रक्षक नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 6 करोड़ रुपए की नकली दवा बरामद की गई है। साथ ही आरोपियों के पास से नकली वैक्सीन, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटी सीरम सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं भी बरामद की गई हैं।
1: And moving to Hyderabad now, the Hyderabad administration has announced a comprehensive safety measures for the outer ring road following a high-level coordination meeting held yesterday. Police Commissioner V.C. Sajjanar chaired the meeting with senior officials from the Transport Department, HMDA, NHAI, GHMC and other agencies. The ORR witnesses 2.80 lakh vehicles daily, with an average of 5 to 6 accidents happening every day. The commissioner emphasized proactive prevention rather than reactive response, setting a target of 0 accidents. Key measures include increased CCTV surveillance, enhanced vehicle fitness inspections, special counseling for traffic violators. Safety awareness messages will be sent to commuters' mobile phones upon entering the ORR. Moving to another news from Hyderabad, the Union Minister Kishan Reddy inspected arrangements for Prime Minister Narendra Modi's massive public meeting at Hyderabad's parade grounds scheduled for May 10th. Speaking to media after reviewing preparations, Reddy highlighted the central government's sustained commitment to Telangana's development. The minister noted that approximately 12 lakh crore rupees have been allocated for Telangana's development over the past 12 years. And over to you now, Nikhil, for the next one.
0: जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र SSC की कक्षा 10वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगा। परिणाम results.digilocker.gov.in, mahassscboard.in और ssc.mkcl.org पर उपलब्ध होंगे। लगभग 16 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नवनिर्मित अंधेरी रेलवे स्टेशन RS डाकघर का उद्घाटन करेंगे। मूल रूप से 1932-33 में स्थापित अंधेरी RS डाकघर को जन सेवा कनेक्ट परियोजना के तहत उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर ग्राहक सुविधाओं और आधुनिक डिजिटल सेवाओं के साथ उन्नत किया गया है। ये नवीनीकरण इंडिया पोस्ट की परंपरा से प्रौद्योगिकी की तरफ जाने वाली यात्रा में एक महत्वपूर्ण

0: है.
1: And taking you all to Bengaluru now. Karnataka will organize an exclusive job fair for persons with disabilities in August 2026 at Kantirwa Stadium in Bengaluru. Skill Development and Medical Education Minister Dr. Sharana Prakash R. Patil announced this while launching the Adidwara app, an inclusive employment and skilling platform for persons with disabilities at Vikas Sodha. The platform will connect persons with disabilities to job opportunities, internships and skill development programs through AI-based job matching. Karnataka has decided to establish sustainable data parks in Bengaluru, Mysuru and Mangaluru with a combined capacity of 1,000 megawatts. That decision was taken at a meeting attended by Energy Minister K.J. George, Industries Minister M.B. Patil and IT Minister Priyank Kharge. A 500 megawatt data park will be set up near Hoskote in Bengaluru with solar power supply from Pavagada. Land has also been identified in Mangaluru, while suitable land will be selected in Mysuru. The ministers directed officials to make necessary preparations and hold discussions with potential investors soon. We have one more from Bengaluru. The Greater Bengaluru Authority has accelerated stormwater drain works being undertaken under World Bank funding across the city ahead of the monsoon season. Chief Engineer S.V. Rajesh said works worth Rs 2,000 crore are in progress to develop and strengthen stormwater drains, including conversion of Kachcha drains into RCC lined drains. World Bank representatives yesterday inspected the ongoing works at Silk Board Junction, Anjanapura, Gandhinagar and Madiwala Lake.
0: और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है. राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है. इस बीच कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. तो ये थे महानगरों से जुड़े हुए अब तक के प्रमुख समाचार. और सुभद्रा, अब हम लेते हैं मौसम का हाल. तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. मुंबई की बात करें तो आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस तक के रहने के आसार हैं. कोलकाता की बात करें तो वहाँ आंधी के साथ बारिश की संभावना है. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. अन्य महानगरों में आज मौसम कैसा रहेगा सुभद्रा?
1: हाय यस निखिल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन ऑफ थंडरस्टॉर्म. मिनिमम टेंपरेचर वाज 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 37 डिग्रीज. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेंपरेचर वाज 23 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज. हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग. The temperature will hover between a minimum of 25 and maximum of 40 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास के पन्ने पलटने का, अपने श्रोताओं को उन कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की है. आज 8 मई है और प्रमुख घटनाएं किस प्रकार, इस पर हम बात करते हैं सुभद्रा.
1: यस, एंड टुडे निखिल, बिफोर वी गो टू द हिस्ट्री सेक्शन, वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, अ डे दैट सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड सेल्फलेस सर्विस. दिस ओकेजन कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेनरी डुनंट, whose vision laid the foundation for one of the world's largest humanitarian movements. Across the globe, Red Cross and Red Crescent volunteers continue to serve people in times of disaster, conflict and need, bringing hope where it is needed most. This year's theme is United in Humanity, reminds us that together, through compassion and solidarity, we can build a more caring and resilient world.
0: बता दें कि ये संगठन मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतों पर कार्य करता है. और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज मनाया जा रहा है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य लोगों को थैलेसीमिया जैसी गंभीर आनुवांशिक रक्त बीमारी के प्रति

0: जागरूक करना और रोगियों के प्रति सहयोग तथा संवेदनशीलता को बढ़ाना है। ये एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है और इस रोग की वजह से रोगी को एनीमिया, कमजोरी, थकान या फिर कई अन्य तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर अस्पतालों, स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता रैलियां, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर और कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
1: And let's get to some history now, Nikhil.
0: जी.
1: In 1360, the Treaty of Brittany was signed between England and France. And in 1886, American pharmacist John S. Pemberton developed Coca-Cola, a drink he originally billed as a cure-all tonic.
0: और श्रोताओं को बता दें कि वर्ष 1541 में आज के दिन ही हर्नांडो डी सोटो ने मिसिसिपी नदी की खोज की थी और वे ऐसा करने वाले पहले यूरोपीय खोजकर्ताओं में से एक थे।
1: And in 1624, the Treaty of Vienna was signed between Roman Emperor Ferdinand II and King Bethlen Gabor. And in 1945, Nazi Germany surrendered to the Allied forces, bringing an end to World War II in Europe. And 1962, the era of trolley bus in London ended. These buses were replaced by diesel-fueled buses.
0: वर्ष 1962 में आज के दिन ही रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी और इससे पहले वर्ष 1933 में आज के दिन ही महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश अत्याचार को समाप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन का उपवास शुरू किया था।
1: And one more important item, this is in 1980 it happened, the world was declared free of the deadly disease of smallpox at the World Health Assembly. The global eradication of smallpox is considered the biggest achievement in international public health, of course.
0: श्रोताओं को बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 2002 में कराची में एक आत्मघाती बम विस्फोट के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपना पाकिस्तान का दौरा रद्द करके स्वदेश वापसी की थी और वर्ष 2004 में आज के दिन ही श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 521 विकेट हासिल करके सर्वाधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। और अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वासुदेव चापेकर की, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर के छोटे भाई थे जिन्हें सामूहिक रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अधिकारियों के अत्याचारों का विरोध किया और आपको बता दें कि 1897 में पुणे में प्लेग फैलने के दौरान ब्रिटिश अधिकारी वॉल्टर चार्ल्स रैंड द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार से क्रोधित होकर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने रैंड को मार दिया था। वासुदेव चापेकर ने भी अपने भाइयों का पूरा सहयोग किया और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी।
1: एंड टुडे वी रिमेंबर जॉन स्टुअर्ट मिल, इंग्लिश फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ही वाज प्रोमिनेंट एज अ पब्लिसिस्ट एंड reforming age of the 19th century and remains of lasting interest as a logician and an ethical theorist. He passed away this day in 1873. And friends, today is the death anniversary of Ustad Zia Fariduddin Dagar, a titan of the Hindustani classical tradition of Dhrupad, whose mastery of his art won him an army of fans all over the world. Dhrupad Sansa was started under the Cell for Human Values to create an appreciation about Indian classical arts and culture among staff and students of the institution. And Nikhil, this is so beautiful what he said. Ustad Dagar says, Swar and Ishwar are the same. When you know one, you know the other. There is no religion to divide humanity. We are one and the music is one. And just let's listen to excerpts from one of his interviews.
2: Sir, Sangeet is a very big thing. दुनिया में तीन चीजें ऐसी हैं कि प्रत्यक्ष लोग उसको देख नहीं सकते। ईश्वर नाम की जो चीज है, जो कभी जन्मता नहीं है, कभी मरता नहीं, उसको किसी ने नहीं देखा। ऐसे स्वरों को भी किसी ने नहीं देखा, केवल सुन के महसूस करते हैं। स्वर और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। जिसने स्वरों को समझ लिया वो ईश्वर को भी समझ देगा, जिसने ईश्वर को समझ लिया वो स्वरों को समझ देगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो। आप मानव समझ के आप अपना कार्य कीजिए कि मैं मानव हूँ, मेरा खर्चा भी क्या बस।
0: आपको बता दें कि जिया फरीदुद्दीन डागर को ध्रुपद परंपरा का एक प्रमुख कलाकार माना जाता है और वे ऐसे घराने से संबंधित रहे जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन परंपराओं को जीवंत करके रखा हुआ है। और

0: And of course, he was awarded the 1994 Sangeet Natak Academy Award, followed by the Padma Shri Award in 2012.
1: और श्रोताओं को बता दें कि आज पुण्यतिथि है भाई बाल मुकुंद की। वे भारत के महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी थे। देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर के हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। आपको बता दें कि भाई बाल मुकुंद का नाम विशेष रूप से दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ है। 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में उन्हें सहभागी माना गया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर देशद्रोह के आरोप में उन्हें फांसी की सजा दी गई और आज के दिन 1915 में उन्हें फांसी दी गई थी।
0: And American singer, actor, one of rock music's first teen idols, Ricky Nelson was born this day in 1940, who recorded his first song in 1957. Nelson created boisterous rockabilly-flavored rock and roll, as well as some gentler ballads. Here's a beautiful song, Traveling Man.

0: श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है मास्टर अमीर चंद की। वे स्वाधीनता सेनानी थे और लाला हरदयाल के संपर्क से क्रांतिकारी आंदोलन में आए और फिर राज बिहारी बोस के घनिष्ठ सहयोगी बन गए। अमीर चंद के मन में देशभक्ति की मान्यता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के बाजार में अपना स्वदेशी स्टोर खोला था और वहां देशभक्तों की तस्वीरें तथा क्रांतिकारी साहित्य बेचा करते थे। और आपको बता दें कि उत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्यों का संयोजन उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में किया, जिसकी वजह से उन पर एक षड्यंत्र का केस चला और अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाकर उन्हें 8 मई को फांसी की सजा दी थी। और आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की। वे प्रसिद्ध इतिहासकार थे और साथ ही एक जाने माने मार्क्सवादी दार्शनिक भी थे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय दर्शन में भौतिकवादी संस्कृति की गवेषणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी रचनाओं की हम बात करें तो भारत और दुनिया के लोग, प्राचीन भारत में विज्ञान और समाज, प्रकृति पदार्थ और परमाणु तथा आधुनिक विश्व का इतिहास जैसी पुस्तकें हैं जो आज भी खूब पसंद की जाती हैं।
1: एंड फ्रेंड्स, 1926 मई 8 हैप्पी 100 इयर्स टू सर डेविड एटनबरा वाज मास्टर द क्राफ्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। नेचुरल हिस्टोरियन, ब्रॉडकास्टर एंड ऑथर फ्रॉम लेस्टर इंग्लैंड हैज अनडाउटेडली इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब टू लव एंड केयर फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। एंड इन डूइंग सो एटनबरा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एंड मोस्ट ट्रस्टेड फेसेस ऑफ आवर स्क्रीन्स। Known for his distinctive voice in pioneering nature documentaries, including Life on Earth, Planet Earth, and Blue Planet, that's a lifetime of wildlife filmmaking. He has educated millions on the natural world and become a leading voice for environmental conservation. American blues singer, guitarist, composer Joe Bonamassa celebrates his birthday today. He's played with legends, studied the greats, and carved out a legacy of his own. A blues tune right here, right now for Joe Bonamassa.

श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है आत्माराम राव जी देशपांडे की। वे मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे और समाज शिक्षा विशेषज्ञ विदर्भ के प्रसिद्ध मराठी कवि के प्रसिद्ध कविता संग्रह की हम बात करते हैं तो फलवाद, भग्नभूर्ति, पीरदवा, सांगाती, दशपदी जैसी रचनाएं हैं। और आपको बता दें कि 1977 में दशपदी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही जयंती है स्वामी चिन्मयानंद की। वे भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक

0: चिंतक और वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे और आपको बता दें कि पूरे देश में भ्रमण करते हुए उन्होंने कई सारे कार्यों की शुरुआत की और शुद्ध धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने गीता ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया था और 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना भी की थी।
1: एंड बर्थडे ग्रीटिंग्स टू कीथ जैरेट, अमेरिकन जैज एंड क्लासिकल पियानिस्ट, कंपोजर, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, अ चाइल्ड प्रोडिजी। जैरेट बिगन स्टडिंग द पियानो एट एज 3, परफॉर्मड हिज फर्स्ट सोलो रिसाइटल एट 7. He worked as a professional musician while in elementary school, also learning to play drums, vibraphone, soprano, saxophone, trumpet, and did not forget the electric guitar too. So fans continue to love those soaring melodies, and you are listening to one already in the background. It's called My Song.

और श्रोताओं, आज जयंती है गिरिजा देवी की, जो कि भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है। उन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, जो बनारस घराने से संबंधित रही हैं। उनकी कजरी बरसन लगी बहुत प्रसिद्ध हुई थी।

0: Girija Devi was awarded the Padma Shri in 1972, Padma Bhushan in 1989 and Padma Vibhushan in 2016.
1: और श्रोताओं को बता दें कि आज ही जयंती है तपन राय चौधरी की, जो कि जाने माने इतिहासकार थे। और तपन राय चौधरी ब्रिटिश भारतीय विशेषज्ञ, इतिहास, भारतीय आर्थिक इतिहास और बंगाल के इतिहास के विशेषज्ञ थे। 1993 में ऑक्सफोर्ड से सेवानिवृत्त हुए और 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: एंड एलेक्स वैन हेलन, ड्रमर को फाउंडर ऑफ रॉक बैंड वैन हेलन, सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। ऑल्सो राइट आर्म फास्ट बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट एंड कैप्टन पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे।
1: और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है रेमो फर्नांडिस का, जो कि भारत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार है, जिन्हें खासकर हमारे देश में इंडी पॉप और फ्यूजन संगीत के लिए जाना जाता है।

आपको बता दें कि रेमो ने भारतीय संगीत में पश्चिमी रॉक, पॉप और भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करके एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने 1980 से 1990 के दशक में अपने ऊर्जावान और अनोखे गीतों से काफी लोकप्रियता हासिल की थी। आइए सुनते हैं उन्हीं का गाया एक और गीत।

0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आप सभी से अनुमति लेने का, तो फिर एक नई मुलाकात के वादे के साथ अनुमति लीजिए निखिल और सुभद्रा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं संपन्न करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने

0: मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया।

0: लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at business forum in Mumbai.

0: के सदर तोलेम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इक़दामात का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरी तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतअद्दिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को भी तकरीब के लिए मदु किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस की मीटिंग होगी, जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे, क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिलका विट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या ना देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टियों ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का यह फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बोहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तोलेम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने

0: उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तावुन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसानायके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की कयादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलंबो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इको निज़ाम में तावुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तावुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तावुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चैम्बर के चेयरपर्सन डॉक्टर एम जे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजिशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज़्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलों पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाज़ह है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में ये कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौमे फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदामात किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीक़ाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और अवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए BJP के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलेम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल लगी और 8:46 और 8 सेकंड पर गोल्ड स्टूडियो से आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा।

जनाब अमित कुमार और कंचन की आवाज में 1980 की हिट फिल्म कुर्बानी से ये था द वेरी सेंसेशनल हिट, जो आज भी फंक्शंस हों, चाहे डांस पार्टीज हों या डिस्कोज हों, जब भी ये गाना बजता है तो आप खुद ब खुद बजते रखने लगते हैं। और 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये गोल्डन म्यूजिक रहेगा ऐसे ही आपके साथ 24 घंटे। फिलहाल ये भी आपको बता दूं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमारा ये बॉन्ड

अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं जिसमें कि 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

8:53 और 32 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली और अ गोल्ड स्टूडियो से आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त पूजा। और दोस्त आपने भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। लेकिन जब हम रास्तों की बात करते हैं तो फिर हमें जिद्दी होने से ज़्यादा ज़रूरी समझदार होना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेटा और फिगर्स उठाकर देखने लगें तो फिर हमें मिलेगा कि सबसे ज़्यादा डेथ और कैजुअलिटीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं रोड एक्सीडेंट्स, जो डेफिनेटली अवॉइड और कंट्रोल दोनों ही किए जा सकते हैं। और इसीलिए मनाया जाता है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा होस्ट किया जाता है, ताकि रोड एक्सीडेंट से बचाव के लिए जागरूकता और जानकारी बढ़ाई जा सके। और 8 से 12 मई 2026 के बीच मनाए जा रहे रोड सेफ्टी वीक में जिन बातों पर फोकस किया जाएगा वो है #slowdowninitiative, ताकि सड़कों पर हो बेटर और ही मदद करेंगे।

8:58 और 15 सेकंड हो गए हैं और मेरे चलने का वक्त हो रहा है, लेकिन आप जुड़े रहिए इसी तरह 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन के बाद म्यूजिकल दिल्ली का दूसरा सेगमेंट भी होगा आपके लिए 9:10 से। तो फिलहाल मुझे यानी अपनी रेडियो वाली दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ आपसे यही 100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। टिल देन कीप एंजॉयिंग द गोल्डन म्यूजिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया।

राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची वीसीके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एम जे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी और निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में भाग लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, खुद पर और अपनी हर खूबी पर हमेशा भरोसा रखिए। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे सार्थक बनाइए। मेहनत रंग लाती है, कभी हार मत मानिए। गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं, तो हर दिन कोशिश करते रहिए, दिन की नई शुरुआत करते रहिए और अपने उन कामों को जो आपने कल पूरे नहीं किए थे आज पूरा कर दीजिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 9:11 और 42 सेकंड हो चुके हैं और ये है म्यूजिकल दिल लगी। तो म्यूजिकल दिल लगी की शुरुआत म्यूजिक के साथ ही होगी, है ना। तो चलिए ये गीत सुनाती हूँ आपको, आई मिलन की बेला फिल्म से रफी साहब और लता जी की आवाज में। खूबसूरत गीत से करते हैं इस सफर की शुरुआत। जुड़े रहिएगा, सुप्रभात।

दोस्तों आकाशवाणी की बात करें तो अपने 90 साल पूरे करने जा रहा है और 1936 में 8 जून के दिन इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में इसका नाम आधिकारिक तौर पर आकाशवाणी रखा गया था और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है और दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। बहुत सी भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेजी के अलावा मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ऐसी न जाने कितनी ही भारतीय भाषाओं में समाचार और कार्यक्रम प्रसारित होते हैं यहाँ से, यानी कि बहुभाषी सेवा देता है ये आकाशवाणी। और समाचार, कृषि संबंधी सलाह, शिक्षा, संगीत, नाटक, अलग अलग तरह के ढेरों कार्यक्रमों को आप यहाँ से सुनते हैं और ये सफर अब 90 साल का हो चुका है। तो भाई 90 साल पूरे होने के उपलक्ष में आपकी भागीदारी भी तो सुनिश्चित करनी है ना हमें इसमें, क्योंकि आप ही की वजह से तो इतना लंबा सफर तय कर पाया है आकाशवाणी। तो चलिए आज आपको भी एक छोटा सा काम देते हैं, आपसे एक सवाल पूछती हूँ और आपको उस सवाल का जवाब मुझे भेजना है और सबसे पहले सही जवाब भेजने

वाले श्रोता को जरूर मैं कॉल लगाऊंगी और उनसे ऑन एयर बात करूंगी। तो तैयार हैं आप? चलिए सवाल पूछूं उससे पहले नंबर बता दूं कहां पर आपको जवाब भेजना है। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9868867533 पर, यानी 9868687533 पर, या फिर ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com, जिसका भी जवाब सही जवाब मेरी नजर तक पहले पहुंचेगा उन्हें हम लगाएंगे कॉल। और सवाल क्या है अब ये सुन लीजिए, आपको बताना है आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है। जी हाँ, आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको इसका जवाब भेज देना है हमें जल्दी से। और देखते हैं कि आज के लकी श्रोता कौन होते हैं, मैं उन्हें कॉल जरूर लगाऊंगी। तो जुड़े रहिएगा म्यूजिकल दिल लगी के इस खूबसूरत सफर में। आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ और आपका साथ ही एफएम गोल्ड 24/7 आपकी सेवा में रहता है। तो फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाती हूं, आंखें फिल्म से लता जी की आवाज में। ये रहा खूबसूरत गीत।

0: कभी कभी
1: तो भाई, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आज आपको एक अलग योजना की, जिसे हम बात करते हैं हर बार, तो आज एक अभियान की बात करती हूं। और इस अभियान को हम जानते हैं नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से। जी हां, भारत सरकार की सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी पहल है ये। इसका उद्देश्य देश में मादक द्रव्यों यानी इस तरह के पदार्थ जो नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके सेवन की समस्या को खत्म करना और खास तौर से युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना है। यह अभियान 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, जो शुरुआत में करीब 272 सबसे संवेदनशील जिलों पर केंद्रित था, लेकिन अब ये पूरे भारत में लागू है। नशा मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना, इसका उद्देश्य है नशीली दवाओं की मांग को कम करना और प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना। इन सभी उद्देश्यों के साथ इस अभियान को शुरू किया गया और इस अभियान के माध्यम से अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई जा चुकी है। इसमें नशीली दवाओं की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जागरूकता के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार का त्रिस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें जिला प्रशासन, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थान और स्वयंसेवक भी शामिल हैं। युवाओं, महिलाओं और संवेदनशील वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, ये अभियान इस कोशिश में लगा है। और नशा मुक्त केंद्रों की स्थापना और नशे के आदि लोगों को परामर्श यानी काउंसलिंग और चिकित्सा सहायता प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है। और स्कूल कॉलेजों में नशा विरोधी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है, ताकि एक नशा मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके। तो अगर आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह की किसी भी आदत का शिकार है, तो आप उसे इस तरह के केंद्रों तक यानी नशा मुक्ति केंद्रों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें काउंसलिंग करा सकते हैं, उनकी दवा करा सकते हैं, ताकि वो इस तरह की बुराई से दूर हों और अपने परिवार को ध्यान रख सके, उनका भरण पोषण कर सके। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत सुनाती हूं, और ये गीत आपके लिए मन्ना डे साहब की आवाज में नहीं, ये गीत मैं लेकर आई हूं आपके लिए। ये रहा, चलिए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं पहले इस गीत को।

0: तो भाई एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद वो लकी श्रोता हमारे साथ रहेंगी या रहेंगे जिन्होंने सही जवाब सबसे पहले भेजा है हमारे सवाल का। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक और मैं यूं गई यूं वापस आई।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया।

अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: वेलकम बैक आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी लकी श्रोता जिनका सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचा। तो भाई कौन है जान लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो अंशु जी, आप अपना पूरा नाम बताइए।
1: मेरा नाम अंशु भार्गव।
0: अंशु जी, तो आप क्योंकि आज आपने सही जवाब दिया, जवाब आपके ही मुंह से सुन ले कि क्या जवाब दिया आपने। हमारा आदर्श वाक्य क्या है आकाशवाणी का?
1: आज का आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन समाय।
0: बहुजन हिताय बहुजन
1: समाय।
0: सुखाए सुखाए, आपने लिखा सुखाए लेकिन आप समाय बोल रही हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाए।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। यस यस, अब वो बोलने में आ रहा है।
0: हाँ जी, तो लगता है कि आप ऑन एयर आके कंफ्यूज हो गई हैं मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं। अंशु जी, आप कहाँ से बोल रही हैं पहले ये बताइए।
1: मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट।
0: ग्रेटर नोएडा से। आप एफएम गोल्ड सुनती हैं?
1: हाँ, आप तो मैं एफएम गोल्ड ही सुनती हूँ, बट एग्जैक्ट माय एज मैं विविध भारती बहुत सुनती थी और मैंने 2-3 प्रोग्राम भी विविध भारती में महफिल अनाउंस किए थे। प्रोग्राम होता था
0: क्या बात है। तो अंशु जी, ऐसा क्या है रेडियो में जो आपको जोड़े रखता है अपने साथ?
1: रेडियो एक माइंड को ना चेंज देता है। मतलब अगर आप कोई टीवी में देख रहे हैं, सपोज कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आपका डिफरेंट होता है, लेकिन अगर आप गाने सुन रहे हैं वो अच्छे रिलैक्स देते हैं। और वैसे भी ये सारे गाने हमारे जमाने के आते हैं, तो हमें सुनने के लिए भी बहुत काम मिलते हैं।
0: अंशु जी, आपके आसपास शायद रेडियो चल रहा है, आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए, उसी से नॉइज आ रहा है तो हम लोग आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि, बिल्कुल। आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद हो?
1: मुझे हाँ,
0: बताइए।
1: बहुत पसंद है वो देवर फिल्म का गाना है, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का।
0: क्या बात है। तो आज लगता है कि आपको वो गुजरा जमाना जो है वो याद आ ही गया है ना? अच्छा, अगर आपको रेडियो या दोस्तों में से किसी को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगी? मुश्किल सवाल है ना, बहुत मुश्किल सवाल।
1: दोस्त भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा होता है, बट रेडियो भी ऑलवेज अच्छा है बिकॉज वो बहुत पीस ऑफ माइंड देता है।
0: यानी दोस्तों की बात हो या रेडियो की बात हो, दोनों एक ही जैसे हैं हमारे लिए, है ना? आप कोई संदेश देना चाहेंगी श्रोताओं को जो अभी इस वक्त आपको सुन रहे हैं?
1: संदेश तो क्या देना है, बस यही है कि सब लोग सबके लिए अच्छा सोचें, गुड सोचें, है ना? हमें भगवान ने भेजा है तो किसी का बुरा करने के लिए नहीं भेजा, अच्छा करने के लिए भेजा। अगर हम सब लोग एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो एक टाइम के बाद ये जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मे बी सब फिनिश होने की साइड में आ जाएंगे।
0: अंशु जी, आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने वाले हैं, आप कितने साल से रेडियो सुन रही हैं?
1: मैं ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए।
0: बाप रे, क्या बात है। हमारे साथ इतनी पुरानी श्रोता जुड़ी हैं और आज उनकी पसंद का गीत ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो चलिए आपकी पसंद का गीत सुनाते हैं देवर फिल्म से मुकेश साहब की आवाज में। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो ये रहा अंशु जी की पसंद का गीत और हमारे आज की लकी श्रोता तो वो हो गई, लेकिन बाकी श्रोता भी निराश ना हो, किसी और रोज आपको भी मौका जरूर मिलेगा। फिलहाल 9:36 हो चुके हैं और ये गीत

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, 41 मिनट 8 सेकंड हो चुके हैं। आप हैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ, सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल लगी। और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं ऐसे ही नहीं एक गीत के साथ, और ये गीत यहूदी फिल्म से लता जी, गीता दत्त और साथियों की आवाज में। ये रहा आपके लिए।

दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई का दिन कुछ वजहों से खास है, लेकिन एक वजह जिसकी बात आज मैं करूंगी वो है आज मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे। जी हाँ, 8 मई का दिन रेड क्रॉस डे के तौर पर जाना जाता है और विश्व रेड क्रॉस डे या रेड क्रिसेंट दिवस जो है वो आज मनाया जा रहा है। मानवता को जीवित रखना ये आज का विषय है और ये विषय उन स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को सम्मानित करता है जो संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान जरूरी देखभाल प्रदान करते हैं। करुणा और एकजुटता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है ये दिन। और अगर मैं बात करूं तो ये विश्व भर में लाखों कर्मचारियों और स्वयंसेवकों को सम्मानित करता है जो चुनौतीपूर्ण समय में सहायता प्रदान करते हैं। ये विषय यानी रेड क्रॉस डे की अगर मैं बात करूं तो मानवीय कार्यों की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि सहायता जरूरतमंदों तक पहुंचे, खास तौर से आपात स्थितियों के दौरान। 7 मूलभूत सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है ये: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनेंट के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है और ये दिन मानवीय प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 8 मई के दिन मनाया जाता है। और इससे पहले कि कुछ और बताऊं, फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और ये गीत आन मिलो सजना फिल्म से रफी साहब की आवाज में, ये रहा आपके लिए।

दोस्तों, एक सुखी और सफल जीवन के लिए स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मकता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। रोजाना व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन को समय पर लें, पर्याप्त नींद लें, 7 से 8 घंटे की, सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें और हर दिन नई चीजें सीखते रहें। सबसे खास है खुद पर भरोसा रखना और दूसरों से तुलना ना करना। तो सचमुच आप जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अनुशासित भोजन का अर्थ होता है कि दोपहर का नाश्ता, जो भोजन है, रात का खाना है, नाश्ता है, सुबह का, वो सब कुछ समय पर लिया जाए तो आपकी सेहत एकदम ठीक रहती है। हर दिन कम से कम 30 मिनट योग, दौड़ना या व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। गर्मियों का मौसम है, शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी पर्याप्त पीना चाहिए, 7 से 8 घंटे की, जैसा कि मैंने कहा, अच्छी नींद लेनी चाहिए। ये मानसिक स्वास्थ्य और रिकवरी के लिए जरूरी है। मानसिक और भावनात्मक वेलबींग के लिए, अपनी खुशी के लिए खुद की तुलना दूसरों से ना करें। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के साथ आप वक्त बिताएं जो आपके पास है, उसके लिए आभारी रहें। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक यानी डीप ब्रीदिंग अपनाने की जरूरत है। और अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं तो लगातार कुछ नया सीखते रहें, ये दिमाग को सक्रिय रखता है। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें, अपना समय सोशल मीडिया के बजाय रचनात्मक कामों में लगाएं। लाइफस्टाइल हैबिट्स को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अपने रहने की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें। खाते समय, काम करते समय मोबाइल से दूरी बनाए रखें। आरामदायक जीवन शैली से बचकर शारीरिक मेहनत जैसे कि चलने पर ध्यान दें ज्यादा से ज्यादा। और प्रोडक्टिविटी यानी अपने दिन की योजना को पहले से बनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें। इसके अलावा कोई भी नई आदत डालने के लिए लगातार 30 दिनों तक प्रयास करें तो वो एक दिन आपकी आदत बन ही जाएगी। ये सरल आदतें हैं जो आपके स्वास्थ्य, शांत और सफल जीवन की ओर आपको लेकर जाती हैं और इसको अपना कर आप जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। वेल, अब आज क्योंकि है फ्राइडे तो आज आपको एक और चीज बता दूं कि आज का दिन होता है खास कहानी का दिन। तो शाम 5:10 पर आप सुनेंगे आज पानी पर लिखी कहानी, और आज की कहानी है कजली, जिसे लिखा है इंदिरा डांगी ने। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेति जी की। जरूर सुनिएगा इस खूबसूरत कहानी को, कहानी कजली, शाम 5:10 पर। और फिलहाल क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है म्यूजिकल दिलगी में ज्यादा बातें करने का, तो आपको बता दूं कि गीत के साथ आपको छोड़े जाऊंगी इस सफर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, और फिर मैं वापस लौटूंगी 10:30 पर लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो जुड़िएगा जरूर। फिलहाल आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है इस गीत के साथ आपसे विदा। राजकुमार फिल्म से रफी साहब की आवाज में खूबसूरत आपके लिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदला बदला सवय बदला,
4: मशीन मध्ये कपडे घालण्यापूर्वी चेक नव्हतं केलं का?
3: बदला बदला सवय बदला, आता नजीकच्या बँकेत जाऊन जुन्या फाटक्या नोट्स बदला। जर बँकेने नकार दिला तर RBI च्या ओम्बुड्समॅन कडे तक्रार करा। RBI सांगते, जाणकार बना, सतर्क रहा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: निशुल्क कायदेशीर मदत मिळवण्यासाठी टेली लॉ ऍप किंवा www.tele-law.in या वेबसाईटवर किंवा टोल फ्री क्रमांक 1-4-4-5-4 वर संपर्क साधा.
1: बदलो बदलो आदत बदलो.
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो. अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए. अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें. RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 वैशाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो

की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्य प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1:11 हुए हैं और इस वक्त कलाकार बेमिसाल में आज फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर और गीतकार कैफी आजमी। मूल नाम उनका रहा अख्तर हुसैन रिजवी। नैसर्गिक काव्य प्रतिभा थी कैफी आजमी में और वो बचपन से ही अच्छी शायरी करने लगे थे। शुरू में उनके काव्य में प्रेम भावना प्रधान रही और बाद में इसमें प्रगतिशील विचारों का भी समावेश हो गया। मुंबई में वो इंडियन पीपल्स थिएटर से जुड़े और बाद में इसके अध्यक्ष बन गए। मुंबई में इप्टा के दिनों में उनके दोस्तों की फहरिस्त में काफी बड़े और नामी कलाकार शामिल रहे। उनकी शायरी, उनकी लेखनी ने जो जादू किया वो शब्दों से बनी तारीफों की मोहताज नहीं। इसी महान शख्सियत का जिक्र करते हुए आज तय करेंगे कलाकार बेमिसाल का ये सफर। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ और सबसे पहले उनके कलम से निकला ये मधुर सा प्यारा सा सदाबहार गीत लता जी की आवाज में अनुपमा फिल्म से।

मशहूर उर्दू शायर और गीतकार कैफी आजमी का जिक्र कर रहे हैं इस वक्त। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 19 जनवरी 1919 को कैफी आजमी का जन्म हुआ था। पिता तहसीलदार थे इनके और चाहते थे कि कैफी को आधुनिक रूप से शिक्षित करना। परिवार के दबाव के कारण इन्होंने पारंपरिक शिक्षा ही हासिल की। शुरुआत में ये लखनऊ के सुल्तानुल मदरिया में कुछ वक्त के लिए रहे और बाद में इन्होंने लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की। उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं का कैफी आजमी को अच्छा ज्ञान रहा। परिवार में इनकी पत्नी शौकत आजमी और दो बच्चे शबाना आजमी और बाबा आजमी है। एक और गीत इन्हीं के कलम से निकला हुआ मनमोहक सा प्यारा सा गीत हीर राजा फिल्म से लता जी की आवाज में।

0: आकाशवाणी समाचार सोनल परमार वाचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए सोमनाथ मंदिरने भारतनी सभ्यता अने शक्तिनुं प्रतीक गणाव्युं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाळना कोलकाता पहोंच्या, नवा चूंटायेला भाजपना धारासभ्यो साथे बैठक योजशे। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरे सुरीनाममां एक सत्रने संबोधता वैश्विक राजनीतिमां भारतनी भूमिकाने रेखांकित करी। डीआरडीओ अने वायुसेनाए ओडिशामां टीएआरए हथियारनी पहेली परीक्षण उडाननुं सफळ संचालन कर्युं। અને આઈપીએલ ક્રિકેટમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ વચ્ચે આજે દિલ્હીમાં મુકાબલો। સમાચાર વિગતવાર। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिरनी पुनः प्राण प्रतिष्ठाने 75 वर्ष पूर्ण थवा निमित्ते सोमवारे गुजरातना प्रवासे आवशे। देशना प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसादे 11 मे 1951 पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिरना प्राण प्रतिष्ठा समारोहमां भाग लीधो हतो। प्रधानमंत्री एक राष्ट्रीय दैनिकमां लखेला लेखमां आ माहिती आपी। તેમણે કહ્યું, કેટલાક મહિનાઓમાં સોમનાથ મંદિર સાથે જોડાયેલા બે મહત્વના આયોજનમાં સામેલ થવું તેમના માટે સૌભાગ્યની વાત છે। આ વર્ષના પ્રારંભે પ્રધાનમંત્રી સોમનાથ મંદિર પર પહેલા આક્રમણના 1000 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વમાં સહભાગી થયા હતા।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विनाश से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों और मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनः निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का भी स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मानित करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाएंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाळना कोलकाता पहोंच्या, तेओ नवा चूंटायेला भाजपना धारासभ्यो साथे बैठक योजशे। तेमां पार्टीना धारासभ्य नेतानी पसंदगी कराशे। राज्यना नवा मुख्यमंत्री अने मंत्री परिषद आवतीकाले शपथ लेशे। आ पहेला श्री शाहे दक्षिणेश्वर काली मंदिरमां पूजा अर्चना करी हती।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरे विकास भागीदारी वैश्विक कार्यदल आकस्मिक सहाय में भारत की भूमिका और नवी पहल पर भार आपता वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका ने रेखांकित करी। सुरीनामना पारामारीबो में प्रगति माटे भागीदारी विषय पर सत्र ने संबोधता श्री जयशंकरे राष्ट्रीय और वैश्विक हित में संकलन स्थापित करने विश्वासपात्र भागीदारी पर भार आप। श्री जयशंकरे कहु, भारत सुरीनामना विकास में भागीदार बनशे।
3: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
4: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं।

फिल्मकार चेतन आनंद की फिल्मों में भी उन्हें काफी लिखने का मौका मिला। हकीकत, हीर रांझा, टूटे खिलौने जो उनके बेटे केतन आनंद की फिल्म थी। इस बीच सत्यकाम, अनुपमा फिल्में भी आई। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ भी उन्होंने उम्दा काम किया। कहानीकार, गीतकार, उर्दू शायर, संवाद लेखक के तौर पर उन्होंने फिल्मों को अपना सर्वोत्तम काम सौंपा। उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार सम्मानित भी किया गया। 1975 में उन्हें आवारा सजदे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 में सात हिंदुस्तानी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम रहा और 1975 में गर्म हवा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। उनकी शायरी, उनके गीत हमारे जहन में हमेशा संजोए रहेंगे। हम कैफी आजमी साहब को हमेशा ऐसे ही याद करते रहेंगे और चलते चलते फिर वक्त मिला तो उनके बारे में ढेर सारी बातें और उनके गीत आपके लिए पेश किए जाएंगे। चलते चलते आखिरी खत फिल्म से लिखा ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में और कलम का जादू रहा कैफी आजमी साहब का, जिनकी ढेर सारी बातें आज हमने की, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं।

0: फिर कुछ देर।
1: इसी के साथ अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ देर में सुनिएगा उर्दू में खबरें।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्की में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल ना हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल बीजेपी कानून साज पार्टी आज सहपहर अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग करेगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौरे हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबीन और बीजेपी के जेर इकतदार तमाम रियासतों के उजराए आला हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आदमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। यह तजर्बा कल उड़ीसा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आदमाइशी परवाज पर डीआरडीओ, भारतीय फजाइया, डीसीपीपी और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला यह हथियार तारा मुल्क में ही तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निज़ाम है, जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और डीआरडीओ की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और इसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकत दारों और दीगर भारतीय सनतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज डेस्क से सौम्य शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा है कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता 2 अहम तकरीबात में शिरकत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इससे कबल इस साल के शुरू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शिरकत की थी, जिसका अहतमाम मंदिर पर पहले हमले को 1000 पूरे होने

0: विरासत भी नज़रिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हम वतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने क्याम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का एहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह की मैराथन और वॉकाथन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुँचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में आवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका की तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावज़ करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निज़ाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में शानदार 111 रन बनाए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। DRDO और भारतीय फजाइया ने मुल्क ही में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आदमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल-अक़वामी तजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायक साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं

0: को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
3: माइग्रेशन पाथ।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड

ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जो गीत गुर्जरी अने आजना गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आपनी साथे छे
1: आपनो दोस्त अने होस्ट आरजे बिपिन मेवाड़ा
0: अने हूँ तरुलता करोड़िया। तमाम मित्रों ने बिपिन मेवाड़ा अने तरुलता करोड़िया ना सस्नेह नमस्कार। बिपिन आ दर वक्त मारे तने समझावानो दर वक्त समझावानो भाई आ स्टूडियो छे आ पतंग आ मांजो आ भमरडो आ चित्रकलानी नोट अने आ आ दड़ो बॉल पण लईने आव्यो छे स्टूडियो में आ क्रिकेटनी बेट आ तने शुं रमत गमतनुं मैदान लागे छे। अरे अरे अरे साप सीढ़ी अने चेस अरे पेला खूणे कैरम बिपिन बिपिन बिपिन भाई आ

0: आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम गीत गुर्जरी। गीत गुर्जरी कार्यक्रम में आज आपनी साथे छे बिपिन मेवाड़ा अने तरुलता करोड़िया। अने वातो थई रही छे बाळपणनी, परंतु बाळपणनी वातो थती होय अने लग्ननी सीजन चालती होय तो लग्ननी सीजन चालती होय त्यारे थोड़ीक वातो आजना दिवसनी पण करवी पड़े थेले सेम्यानी। कारण के हमेशा एवुं कहेवामां आवतुं होय छे के लग्न पहेला तमारे तमारा लोहीनुं परीक्षण अवश्य करावुं जोईए। कारण के जो बन्ने ने थेलेसेमिया होय तो बाळकनुं थेलेसेमिया आववानो डर होय छे। अने आजे छे थेलेसेमिया डे। जो पति थेलेसेमिया माइनर होय, पत्नी थेलेसेमिया माइनर होय तो बाळक कदाच थेलेसेमिया मेजर होई शके। एटले आवा लोकोए लग्न करती वखते पहेला लोहीनुं परीक्षण करवुं खूब आवश्यक छे। अने हा बिपिन, थेलेसेमिया विशे थोड़ीक वधु माहिती तारी पासे छे तो आपणे श्रोताओने जणावीए।
1: जरूरथी। दुनियाभरमां मित्रो 8 મેના रोज विश्व थेलेसेमिया दिवसनी उजवणी करवामां आवे छे। आनुवांशिक रक्त संबंधित आ बीमारी विषय लोकोमां जागृति लावा थेलेसेमिया दिवस उजवाय छे। थेलेसेमिया ए वारसागत बीमारी छे अने पेढ़ी दर पेढ़ी आगळ वधे छे। आ बीमारी बाळकने जन्मथी ज लागू थाय छे अने जीवनभर मटती नथी। थेलेसेमियानी बीमारीथी पीड़ित व्यक्तिना शरीरमां रक्तकण अने हिमोग्लोबिन सरेराश करता अत्यंत ओछू थई जाय छे। थेलेसेमियाना दर्दીઓને દર મહિને લોહીની જરૂરિયાત હોય છે, તેથી આ દિવસે રક્તદાન માટે પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો સાંભળીએ આ ગીત।

मित्रों राकेश मकवाणा नो फोन हतो अने एमनुं केवुं छे के एमना छ माळना मकान में एक कई जग्याए बैठा होय नानपण में अने क्या रमता होय एनी माने बराबर खबर पड़ी जाए अने ए ज खूणे माँ आवीने उभी रही जाए कि मारुं बाळक क्या रमी रह्युं छे। आजे 78 ईयरना एमना मम्मी छे अने आजे पण सरस रास गरबा रमे छे। तो मित्रों आजे वातो करी बाळपणनी, परंतु हाँ तमने कही दऊं कि अहींया अमारा आकाशवाणीनी बाजूमां ओवल मैदान छे अने अमे बन्ने जई रह्या छे क्रिकेट रमवा। अने हाँ बिपिन मानी गयो छे, कारण के श्रोताओ एमने मनाव्यो अने हवे पहली बेटिंग मारी। अने आ साथे ज हूँ बिपिन मेवाड़ानी साथे तरुलता करोड़िया लईए छे रजा, फरी मळवाना वचन साथे। नमस्कार, 4 वागे आप सांभळशो समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में आज नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के

0: पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार 12 मई को शपथ लेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाइगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। ये अमेरिका के व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच 7:30 से अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The meeting of BJP Legislature Party in West Bengal is underway in Kolkata to elect its leader and the Chief Minister. The party's Central Observer and Union Home Minister Amit Shah is present in the meeting. The BJP registered a historic victory in the just-held Assembly elections, ending the TMC's 15-year rule in the state. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on 11th of this month to mark 75 years of inauguration of the restored temple by country's first president, Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister wrote an article in the National Daily Paper today and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath a symbol of India's civilizational strength, unity and resilience. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation weapon off the coast of Odisha yesterday. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, Indian Air Force, DCPP, and the industry for the maiden flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defence capabilities. A report.
4: Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It has been designed and developed by the Research Center Imarat, Hyderabad, along with other DRDO laboratories. The indigenous glide weapon system is the first to utilize state-of-the-art low-cost systems aimed at enhancing the lethality and accuracy of a low-cost weapon to neutralize ground-based targets. The development of the kit has been undertaken with development-cum-production partners and other Indian industries, which have already started production activity. With Ankit Kumar, Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
3: Joint Secretary, Ministry of Minority Affairs Ram Singh chaired a review meeting of central government organizations under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram to review implementation progress and strengthen non-ground delivery of projects. In a social media post, Ministry of Minority Affairs said that the review covered completing non-starter work, updating physical units, submitting utilization certificates and financial reconciliation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized on India's burgeoning role as a pillar of global economic stability and highlighted the nation's significant contribution to international prosperity. The minister made these remarks during an address to representatives from various sections of Surinamese society in Suriname. He pointed to recent data to underscore the scale of India's impact, stating that according to the IMF expectation of global growth this year, India contributes 17% of the total global growth. Back home, government has said domestic LPG supply across the country is smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. In Indonesia, three people were killed after Mount Dukano volcano erupted this morning. Rescuers have found all the survivors from a group of 20 hikers who went missing after the eruption. According to the police, 15 people have been taken to hospital to treat their injuries. Officials say the group was hiking up the volcano despite a climbing ban. Benchmark domestic equity indices declined over 0.6% today as renewed hostilities between the United States and Iran strained a fragile ceasefire and rattled investment sentiment. The Sensex slipped 516 points to close at 77,328 and the Nifty lost 151 points to settle at 24,176. And that is the end of this news bulletin.

जी हाँ, फिल्म बेखुदी का गीत आपने सुना कुमार सानू और आशा जी की आवाज में। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अगला गीत फिल्म झुमरू से किशोर कुमार की आवाज और

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
0: बाबू आना सुनते जाना,
1: धत धत महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका,

0: भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे चाचा
0: तू जा जा, ए जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा, जा

0: rect.crpf.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सिपाही, तकनीकी और ट्रेड्समैन कुल रिक्तियां 9175, पुरुष 9996 और महिला 79 रिक्तियां। सिपाही पायनियर की 20 रिक्तियां उपलब्ध हैं जो पुरुषों के लिए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rect.crpf.gov.in। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अनुबंध के आधार पर प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए 2 सलाहकार विशेषज्ञ के पदों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिक विवरण के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट nmcg.nic.in। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में तथा DCOs में प्रतिनियुक्ति अथवा अवशोषण के आधार पर वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में वरिष्ठ अनुवादक के 6 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए विधिवत माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर अपने आवेदन विधिवत माध्यम से अग्रेषित कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप, पद का विवरण, पात्रता मानदंड, वेतनमान, आवेदन और चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों आदि के लिए देखिए वेबसाइट censusindia.gov.in। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन सक्रिय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों में एडजंक्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कोई भी अंतिम तिथि नहीं है और आवेदन पूरे वर्ष किए जा सकते हैं। आवेदनों पर समय समय पर विचार किया जाएगा। विज्ञापन के प्रथम चरण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। अंतिम तिथि के बाद जो आवेदन प्राप्त होंगे वो अगले चरण के लिए विचार किए जाएंगे। अधिक विवरण के लिए, विस्तार से जानने के लिए देखें संस्थान की वेबसाइट www.nitkkr.ac.in। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लोधी रोड नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है इन रिक्तियों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक डी वेतन स्तर 12, कुल पद हैं 12, जिनमें से 7 सामान्य वर्ग के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सी वर्ग के लिए कुल 141 रिक्तियां उपलब्ध हैं और इनमें से 59 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 21, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 38 और EWS वर्ग के लिए 13 पद आरक्षित हैं। विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं NIC की वेबसाइट पर, जिसका पता है recruitment.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन परिक्रमा में। श्रोताओं, हम मई के शुरुआती दिनों में हैं और ये समय हमें बीते हुए दिनों पर विचार और आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने का मौका देता है। ये मई महीना कई अवसरों की भी शुरुआत है, इसलिए जिन कामों को आप पिछले कई दिनों से टालते आ रहे हैं उन्हें अब पूरा करने की योजना बना सकते हैं। और आपको बता दें कि आज दो बहुत खास दिन भी हैं जिनका इस्तेमाल आप एक अच्छे काम के लिए कर सकते हैं। इसके बारे में आपको प्रोग्राम में आगे बताएंगे। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा।
4: नमस्कार सर फिरोजी एंड टू आर लिसनर्स, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड सर फिरोजी। टुडे वेल सर फिरोजी वाज टॉकिंग अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन, आई थिंक सो। प्रोक्रास्टिनेशन इट्स टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस बेसिकली एंड मैनेज टाइम एक्टिवली। यू शुड कंप्लीट टास्क सफिशिएंटली, डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेक लार्ज प्रोजेक्ट्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड देन कंप्लीट योर टास्क।
3: बिल्कुल
4: एग्जैक्टली, वी कैन डू दिस एंड वी Listeners, for you, for the program, we will first start with the selection of news. Our discussion segment, Dateline India, Sir Firuzi was talking about that as well. We have two topics which we will discuss in great depth, and reports, capsules and tributes will be there at the end of the program. First, we are beginning with the news headlines.
3: पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक।
4: DRDO and Indian Air Force successfully conduct maiden flight trial of indigenous Tara glide weapon.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया।
4: US Court of International Trade declares Trump administration's 10% universal tariff levied on imports from India and other countries illegal.
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हों।
4: And in IPL cricket, Delhi Capitals to take on Kolkata Knight Riders in Delhi this evening. So let's begin our discussion segment, Dateline India. Topic number one, it's World Red Cross Day, which is celebrated to honor the essence of humanity and acknowledge those individuals, especially Red Cross volunteers, who contribute to their communities and continue to save lives worldwide. So the idea for World Red Cross and Red Crescent Day, it came about after the First World War, when an annual action that could take hold in the whole world that would be a major contribution to peace, and it was discussed at 14th International Conference of the Red Cross. So 8th of May was eventually chosen because it is the anniversary of the birth of the founder of the International Committee of the Red Cross, Henri Dunant. The first International Red Cross Day, as it used to be known then, was celebrated on 8th May 1948, this year, 1948. So the official title of the day, it changed over time and became known as World Red Cross and Red Crescent Day in 1984. Sir
3: Firuzi. Bilkul Shagun, aur Vishwa Yudh ke alawa bhi मानवीय सभ्यता के इतिहास में ऐसे अनेक पल आए जब विनाश और पीड़ा ने मनुष्य को उसकी सीमाओं का एहसास कराया, पर इन्हीं हालात के बीच करुणा, सेवा और सह अस्तित्व की एक ज्योति भी जली जिसने मानवता को नई दिशा दी। विश्व रेड क्रॉस दिवस इसी ज्योति का उत्सव है। और बात करें विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 की थीम की तो इस वर्ष का विषय है मानवता में एकता, यानी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी।
4: Right, united in humanity. And now let's discuss about the main aim of the Red Cross Society. It is actually to inspire, to initiate and to encourage all kinds of humanitarian activities under all times and circumstances. So programs conducted by the Red Cross Society can be broadly categorized into four parts, which includes the promotion of humanitarian principles and values. Secondly, disaster response. Third, disaster preparedness. And fourth, health and care. The Red Cross Society is based on seven principles, namely humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary, unity and universality.
3: बिल्कुल शगुन, और मैं ऐसा मानती हूँ कि न सिर्फ किसी संगठन बल्कि जो पूरी दुनिया है, जो हमारा समाज है, उस पूरे समाज का ही आधार मानवता, निष्पक्षता और एकता होना चाहिए। और भारत में रेड क्रॉस की भूमिका की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के रूप में हुई। औपनिवेशिक काल से लेकर आज़ादी मिलने के बाद तक इस संस्था ने निरंतर मानव सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा को जीवित रखा है। देश के विभाजन जैसे त्रासदी के दौर में भी लाखों विस्थापितों को राहत दी, इन्हें पुनर्वास प्रदान किया और युद्ध काल में घायल सैनिकों की निस्वार्थ सेवा की। आज भारत में रेड क्रॉस का सशक्त और विस्तृत नेटवर्क राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तर तक फैला हुआ है। हजारों समर्पित स्वयंसेवक सेवा और संवेदना की भावना से प्रेरित होकर निरंतर समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए कार्य कर रहे हैं।
4: सो

0: Philanthropy. This has been considered the most important human value in Indian tradition. The Indian Red Cross Society has been serving people for more than 100 years. It has shown its commitment through relief work during the natural disasters, also health emergencies. And we should note here that the Indian Red Cross Society is meeting about 10% of India's blood requirements through more than 100 blood donation centers and mobile campaigns across the country. The Indian Red Cross Society is playing an excellent role by safely collecting blood for those in need and promoting the culture of voluntary blood donation. Now we'll move on to the second dateline, the second topic. So every year on May 8, the world also observes World Thalassemia Day. This thereby raises awareness about this inherited blood disorder. It is dedicated to thalassemia patients who are battling the disease and remembers those who passed away. The day serves as a crucial platform to emphasize the importance of disease prevention, raise awareness, sensitize stakeholders as well, promote the early detection, and also to ensure quality care for those affected by thalassemia. The theme for this year's celebration, let's tell our listeners about the theme, Sir Firozi. Hidden No More, Finding the Undiagnosed, Supporting the Unseen. How great. This powerful theme highlights the millions of people, especially carriers and patients, who remain invisible to the healthcare system until a crisis strikes.
1: श्रोताओं, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचती है. इस रोग में शरीर में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इसके रोगी को एनीमिया, कमजोरी, थकान और कई दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. गंभीर रोगियों को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है.
0: जी सर फिरोजी, वेल एक्सप्लेन्ड. सो थैलेसीमिया इज अमंग द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स एंड दिस अफेक्ट्स thousands of children and families across India every year, and this makes awareness about thalassemia extremely crucial, especially among young adults and couples, so that informed healthcare decisions can help reduce the number of children born with the disorder and also lessen the growing burden on families and the healthcare system, right?
1: बिल्कुल शगुन, और आपने बात की informed healthcare decisions की, right. तो आज जब मैं थैलेसीमिया पर रिसर्च कर रही थी तो उस वक्त मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े जिनमें बताया गया है कि कई स्टडीज में सामने आया है कि अब गर्भावस्था के दौरान यानी प्रीनेटल टेस्ट में ही थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिन से जुड़ी दूसरी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है. हालांकि इस संबंध में अभी काफी शोध होना बाकी है, लेकिन ये इस बीमारी को कम करने के लिए हम सभी के लिए एक उम्मीद की तरह है. और कुछ और प्रयासों की बात करें शगुन, तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है. इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर थैलेसीमिया की रोकथाम और प्रबंधन, ब्लड बैंक की सुविधाएं, डे केयर सेंटर, दवाएं, लैब सेवाएं और मानव संसाधन के प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता शामिल है.
0: ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज इन इंडिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज एंड अदर वेरिएंट हीमोग्लोबिन हैव बीन शेयर्ड टू असिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर मैनेजमेंट ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड दिस includes thalassemia. So, the guidelines detail the strategies for management of thalassemia disease, including thalassemia major blood transfusion therapy with packed red blood cell. Other one is iron chelation for iron overload, monitoring and management of complication. And this iron chelation that I talked about, this is for especially for iron overload. The other one is psychological support as well, and non-transfusion dependent thalassemia.
1: और स्वास्थ्य मंत्रालय कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना लागू कर रहा है. इस योजना के तहत पात्र मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सीआईएल के कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. ये योजना देश भर में फैले 17 सूचीबद्ध अस्पतालों में बीएमटी की सुविधा उपलब्ध कराती है. श्रोताओं, एक बार आपको फिर बता दें कि थैलेसीमिया छुआछूत या फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये माता पिता से बच्चों में डिफेक्टिव जीन के जरिए आती है. दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर भी शगुन कहीं ना कहीं से लेकर जागरूकता की अब भी काफी कमी है. तो आज फिर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस बीमारी के मरीजों के साथ भेदभाव से बचें और जिस भी स्तर पर मुमकिन हो इन्हें समाज में शामिल करें.

0: So now we'll move on. The announcement first that we're going to make is about the it's about our series People's Padma on Akashwani. So in our upcoming episode, listeners, we speak to Dr. Ramamurthy Sridhar, a pioneer in radio broadcasting in India. He will be honored with the prestigious Padma Shri. And to listen to the conversation, tune in to 100.1 Akashwani Gold today evening at 5:10 p.m. So you can also listen to it on the News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
1: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे और हम सभी को इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर सुनना
0: Definitely
1: चाहिए
0: listeners should listen into it.
1: और श्रोताओं, अब समय है आपको देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज हमारे लिए क्या खास जानकारी है. कहाँ से शुरू कर रहे हैं शगुन?
0: यस सर फिरोजी, वी विल हेड फर्स्ट टू गैंगटॉक. UNESCO has partnered with the government of Sikkim to document the indigenous engineering heritage of the cane bridges, and this is also known as Ru Soam, in the Kangchenjunga Biosphere Reserve in Sikkim. We have details, more details on this from our correspondent.
2: The roof homes are crafted by the Lepcha community from locally available materials such as bamboo, cane and wood. The engineering practice reflects a sophisticated understanding of ecological balance and structural resilience. The initiative aims to explore how these time-tested practices can inform contemporary approaches to climate adaptation and disaster risk reduction. It will also bring this engineering approach into global scientific and environmental discussions, supporting its integration into contemporary transdisciplinary knowledge cooperation. The Lepcha community holds a deep cultural and spiritual connection to nature. Their bridge-building practices reflect indigenous community needs and understanding of diverse environments and structural mechanics. Led by skilled community members who transmit knowledge orally across generations, these practices reflect careful stewardship of natural resources and harmonious coexistence between human and nature. The resilience of these structures was notably demonstrated during the glacial lake outburst flood of October 2023, when several cane bridges withstood the impact of the event and continued to provide critical connectivity to remote areas. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashwari News Gangtok for Parikrama.
1: भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक और प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव के सानिध्य में आज श्रद्धा और स्वाभिमान का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली 11 मई की यात्रा और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 75 गौरवशाली वर्ष इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को ऐतिहासिक बना रहे हैं. एक रिपोर्ट.
3: सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि भारत की उस सभ्यतागत अजेयता का प्रमाण है जो बार बार विनाश के बाद भी अपनी आस्था की शक्ति पर फिर से खड़ी हुई है. इस नवनिर्माण की नींव आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी. 12 नवंबर 1947 दीपावली का वह ऐतिहासिक दिन था जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों का दौरा किया था और समुद्र के किनारे हाथ में जल लेकर इस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण का अटूट संकल्प लिया था. सरदार पटेल जी का मानना था कि सोमनाथ की बहाली केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं बल्कि भारत के खोए हुए सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वापसी है. जन भागीदारी और राष्ट्रीय संकल्प से कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में निर्मित यह मंदिर आखिरकार 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया गया. आजादी के 75 वर्षों के बाद जब भारत अपना अमृत काल मना रहा है तब सोमनाथ मंदिर भी एक नए स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है. आगामी 11 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाला स्वाभिमान पर्व इसी विरासत और विकास के समन्वय का उत्सव है. इस विशेष अवसर पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु प्रभास पाटन पहुंच रहे हैं. दिल्ली से आए तीर्थयात्रियों का दल यहां की अत्याधुनिक व्यवस्था को देखकर अभिभूत है. सरदार पटेल के संकल्प से शुरू हुआ यह सफर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आधुनिक और भव्य स्वरूप ले चुका है. सोमनाथ की यह अजेयता सिद्ध करती है कि हमलावर मंदिर की दीवारें तोड़ सकते हैं लेकिन राष्ट्र की अटूट श्रद्धा को कभी डिगा नहीं सकते. यह पर्व आने वाली पीढ़ियों को सिखाता है कि विकास की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी विरासत और स्वाभिमान को कैसे अक्षुण्ण रखा जाता है. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंड.
0: Now we'll focus on Goa. So commuters and tourists in Goa may soon trade road traffic for river breezes as the state

0: ज्योति उजळली दिव्य ज्योति कोना कोनी।
1: आज जयंती है गिरजा देवी की, जो भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं। इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इनकी एक कजरी बरसन लगी काफी प्रसिद्ध हुई थी। गायकी के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए साल 1972 में इन्हें पद्मश्री, साल 1989 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

आज जन्मदिन है रेमो फर्नांडिस का, जो भारत के प्रसिद्ध गायक, गीतकार और संगीतकार हैं। इन्हें खासकर इंडी पॉप और फ्यूजन संगीत के लिए जाना जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत में पश्चिमी रॉक, पॉप और पारंपरिक भारतीय संगीत का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत किया। इनके प्रसिद्ध गीतों में हम्मा हम्मा भी शामिल है, जिसे बाद में फिल्म बॉम्बे में भी इस्तेमाल किया गया।

0: श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सर फिरोजी और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
1: वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे अहेड।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता

0: मुख्यमंत्री गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। In West Bengal, senior BJP leader Subhendu Adhikari has been elected the leader of the BJP legislature party in West Bengal today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. BJP sources said Adhikari's name was proposed at the legislature party meeting and formally announced by Union Home Minister Amit Shah in the presence of newly elected BJP MLAs and senior party leaders.
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: The swearing in ceremony of the new BJP government will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata tomorrow. Government has a domestic LPG supply across the country smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that the government's efforts has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। 5:24 और ठीक 24 सेकंड देविका हाजिर है लेकर गाते गुनगुना दे। शाम ढले तो लगता है दिन ने चुपचाप अपनी कहानी समेट ली हो। कुछ ख्वाब धूप में रह गए, कुछ यादें अंधेरे के साथ घर लौट आई। जिंदगी भी अजीब मुसाफिर है, सुबह उम्मीद देती है और शाम हिसाब मांगती है। कभी चाय की भाप में मिल जाती है तन्हाई, कभी डूबते सूरज में सुकून दिख जाता है। हम भी हर शाम थोड़ा बिखरते हैं और हर रात फिर खुद को जोड़ लेते हैं। शाम का रंग शायद इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें दिन की थकान भी है और रात की उम्मीद भी।

जी हाँ, फिल्म दुनिया का गीत आपने सुना, जावेद अख्तर साहब के बोल, आडी बमन का संगीत और आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, अधूरापन भी जिंदगी का एक खूबसूरत सच है, जो पूरा हो जाए वो चाहत कहाँ रह जाती है। कुछ लोग मिलकर भी नहीं मिलते, कुछ ख्वाब पूरे होकर भी खाली लगते हैं, इसलिए शायद जिंदगी हर मोड़ पर अधूरा छोड़ देती है। हम सब अपने अंदर कोई ना कोई कमी लिए चलते हैं और वही कमी हमें इंसान बनाए रखती है ना।

जी हाँ, फिल्म संगीत का बेहतरीन गीत आपने सुना। बोल थे संतोष आनंद के, संगीतकार थे आनंद मिलिंद और गाया इस गीत को अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने।

0: जी हाँ, किशोर कुमार साहब की आवाज़ में आपने गीत सुना मिस्टर इंडिया फिल्म से। जावेद अख्तर साहब के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत गाते गुनगुनाते सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, कुछ चीज़ों के बिना बहुत अधूरी लगती हैं, जैसे कि गुलशन बहार बिना, नारी श्रृंगार बिना, विचार रफ्तार बिना, सितार छनकार बिना और एक खूबसूरत सा गीतों का सफर एफएम गोल्ड के बिना और जिंदगी प्यार बिना।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में।

आज के पंछी का गीत आपने सुना, शैलेंद्र साहब के बोल, शंकर जयकिशन जी का संगीत और आवाज, मुकेश जी की। श्रोताओं, सफर की शुरुआत अक्सर छोटे कदमों से होती है, मगर रास्ते वही पूरी जिंदगी बदल देते हैं। हर मोड़ कुछ सिखाता है, हर ठोकर थोड़ा मजबूत बनाती है। मंजिल से ज्यादा खूबसूरत तो चलते रहने का एहसास होता है ना। जिंदगी भी एक सफर है जहाँ लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ याद बन जाते हैं और कुछ वजह बन जाते हैं।

दिवस का गीत से गाते गुनगुनाते हैं आज बस इतना ही। हसरत जयपुरी साहब के बहुत शंकर जी किशन जी का संगीत और आवाज किशोर कुमार की। बताती जाती हूँ, ठीक 6 बजे होंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट

0: ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP rule states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nayanar Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results. Interacting with media, he said the BJP

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है फिल्म एक नजर का। इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों की महफिल अभी यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 पर।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिम बंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य तारा ग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया पूरितम्। अपि च भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा सांघाई नगरे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 मध्ये महिलानां रिकर्व उपांत्य चक्रीय द्वंद्वे प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंग प्रदेशे भाजपा विधायक दलस्य नेतृत्वेन निर्वाचितः, येन तस्य राज्यस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री भवितुं मार्गः प्रशस्तः अभवत्। विधायक दलस्य सभायाम् अधिकारिणः नाम प्रस्तावितमासीत्, तथा च केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन नवनिर्वाचितानां भाजपा विधायकानां दलस्य वरिष्ठ नेतॄणां च उपस्थितौ औपचारिक रूपेण घोषितम्।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है।

0: इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नव भाजपा सर्वकारस्य शपथ ग्रहण समारोहः श्वः कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मासस्य एकादश दिनांके गुजरात राज्य स्थितस्य सोमनाथ मंदिरस्य दर्शनं करिष्यति। एकपञ्चाशदधिक नवदशशततमे वर्षे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपतिना डॉ. राजेंद्र प्रसादेन नवीकृतस्य मंदिरस्य उद्घाटनं कृतमासीत्। तस्याः ऐतिहासिक घटनायाः 75 वर्ष पूर्तेः स्मरणार्थम् एषा यात्रा आयोज्यते। अद्य प्रधानमन्त्रिणा स्वस्य राष्ट्रिय दैनिके लेखे एषा सूचना प्रदत्ता। स्वस्य लेखे सः उक्तवान् यत् गत केषुचित् मासेषु सोमनाथ सम्बद्धेषु महत्वपूर्णेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं तस्य कृते महान् सौभाग्यस्य विषयः अस्ति। अस्य वर्षस्य आरम्भे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अपि सहभागित्वं कृतवान्। अयं कार्यक्रमः मंदिरस्य उपरि जातस्य प्रथम आक्रमणस्य सहस्र वर्ष पूर्त्यवसरे आयोजितः आसीत्। प्रधानमंत्रिणा सोमनाथः भारतस्य सभ्यतायाः शक्तेः राष्ट्रिय एकतायाः संघर्षशीलतायाश्च प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेना इत्येताभ्यां ह्यः ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन तारा इति शस्त्रस्य प्रथमं साफल्यं उड्डयन परीक्षणं संपादितम्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अस्य सफलोड्डयन परीक्षणस्य कृते डीआरडीओ भारतीय वायुसेना डीसीपीपी तथा संबद्ध उद्योगान् अभिनंदितवान्। सः एतत् भारतस्य स्वदेशीय रक्षा क्षमता संवर्धनस्य दिशि महत्वपूर्णं पदाक्षेपम् इति वर्णितवान्। तारा भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली इति अस्ति, या अमार्ग निर्देशित विस्फोटकान् सूक्ष्म मार्ग निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। अन्याभिः डीआरडीओ प्रयोगशालाभिः सह सहयोगेन हैदराबाद स्थितेन अनुसंधान केन्द्रेण अस्य परिकल्पना तथा विकासः कृतः। एषा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्र प्रणाली स्वप्रकारे प्रथमास्ति, यस्याम् अत्याधुनिकाः अल्पव्ययुक्ताः प्रौद्योगिकयः उपयोजिताः सन्ति। एतत् न्यून व्ययुतस्य शस्त्रस्य अग्निशक्तिं तथा लक्ष्यभेदन यथार्थतां वर्धयित्वा भूलक्ष्यान् प्रभाविरीत्या निष्प्रभावी करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक आर्थिक स्थिरतायाः स्तंभरूपेण भारतस्य वर्धमान भूमिकायाः विषये अवधानं प्रदत्तवान्, तथा च अन्ताराष्ट्रिय समृद्ध्यै राष्ट्रस्य महत्वपूर्णं योगदानं अवधानं प्रदत्तवान्। सुरिनाम देशे सुरिनामी समाजस्य विभिन्नानां वर्गाणां प्रतिनिधिवर्गाणां सम्बोधनावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। सः भारतस्य प्रभावस्य परिणामं अधोरेखितुम् अद्यतनीयां दत्तांशान् सूचयन् उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे वैश्विकवृद्धेः IMF इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं सम्पूर्णे वैश्विकवृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
2: इंडिया कंट्रीब्यूट्स, भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सके।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ़ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र

0: संघस्य भारतस्य स्थायि अभियाने द्वितीयान्तराष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधिदलस्य प्रमुखान् सम्बोधयनासीत्।
1: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृहे LPG इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरणसंस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
2: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर LPG प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, PNG कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90तमस्य वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, RBI भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः CEO गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की संजीदा चाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: धन्यवाद प्राची।
1: तो श्रोताओं, चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: थैंक यू प्राची। Benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 500 points, Nifty settles below 24,200. Major Asian stock markets end mixed, and global crude oil prices rise marginally.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक लुढ़का, वहीं निफ्टी 24,200 के नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में रहा मिश्रित रुझान और वैश्विक कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before the top story of the day, here's an important announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, आइए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में तेजी के कारण निवेशकों का विश्वास डगमगाता नजर आया। सेंसेक्स 516 अंक गिरकर 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 151 अंक लुढ़ककर 24,176 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार का रुख मिलाजुला रहा। मिड कैप 100 में 0.1% से अधिक की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप 100 में 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: Benchmark domestic equity indices declined over 0.6% today as renewed hostilities between the United States and Iran strained a fragile ceasefire and rattled investor sentiment. The Sensex slipped 516 points to close at 77,328 and the Nifty lost 151 points to settle at 24,176. Meanwhile, the broader market on the National Stock Exchange ended on a mixed note. The mid-cap 100 dipped over 0.1%, while the small-cap 100 rose 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सबसे पहला नाम SBI 6.5% से अधिक। वहीं HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयर लगभग 2% गिरे। उधर दूसरी ओर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टाइटन लगभग 5%, एशियन पेंट्स लगभग 3% और अदानी पोर्ट्स के शेयर 1.5% से अधिक बढ़े।
0: In the sectoral indices at the BSE, 17 out of 25 sectors edged downward. Among the top losers, PSU Bank dropped 2.6%, top 10 bank index lost over 1.5%, and financial services dropped over 1.2%. In the top gainers, consumer durables rose 2%, focused IT climbed 1.3%, and IT as well as services added 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,148 companies declined, shares of 2,068 companies advanced, while shares of 190 companies remained unchanged.
1: श्रोताओं, आइए जानते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 97.96 पर चल रहा था। विशाल, हम देख रहे हैं बाजार की चाल की। हमने देखा बुधवार को बाजार में एक उछाल आया 1% से अधिक, 1.25 अगर मैं सही कह रही हूं तो, और कल हमने देखा कि बाजार एक फ्लैट नोट पर, और आज फिर हम ये रुख देख रहे हैं। आप इसे कैसे रेखांकित करते हैं?
2: देखिए, बाजार सेंटिमेंट्स पे चलता है, हम सबको मालूम है, और ये जो उतार चढ़ाव बाजार में हमें देखने को मिल रहा है ये सीधे तौर पर जो जियोपॉलिटिकल क्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिसे हम कहें जो चल रही है, यानी कि ईरान और बनाम अमेरिका और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें जैसे जैसे उतार चढ़ाव दिखेगा वैसे वैसे बाजारों में उतार चढ़ाव दिखेगा, और ये केवल भारतीय बाजारों के लिए नहीं सही साबित है बल्कि विश्व के सभी बाजारों के लिए। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि जैसे ही वहां कोई बातचीत की गुंजाइश दिखाई देती है, तो हम अगर थोड़ा सा नजर डाल के देखें तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, यानी कि कच्चे तेल के जो दाम है, वो नीचे गिरते हैं, और जैसे ही वहां एक आध मिसाइल गोला बारूद इधर से उधर दागा जाता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जाते हैं, और कच्चे तेल के जो दाम हैं उनका सीधा सीधा असर जो है जो इकोनॉमीज हैं, जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल इकोनॉमीज हैं, यानी कि हर देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस पर सीधे सीधे असर पड़ता है। शुरुआत के 10-15 दिन में हमें वो असर कम देखने को मिला, लेकिन क्योंकि अब लड़ाई को शुरू हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, तो अब वो धीरे धीरे वो एक सस्टेन असर दिखाई दे रहा है, और वो असर जो है जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं

0: में भी दिखाई देता है, इसलिए इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हैं। और ये एक सीधा अंदाजा इसका आप लगा सकते हैं कि जो हमारा विक्स जिसे बोला जाता है, यानी कि जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो इस वक्त लगभग 17% के आसपास है। यानी कि वो एक सीधा इंडिकेशन है कि भाई इस वक्त बाजार में वो राहत की सांस नहीं है, यानी कि अभी भी सांस थामे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स भी हैं या बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, वो सब सांस थामे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक पॉजिटिव क्यों आए। और आपने बुधवार से लेकर अब तक का जो वाकया बताया उसमें देखें तो बुधवार के समय जब बातचीत एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे दौर की बातचीत एक बार आगे बढ़ेगी, कुछ पॉइंट्स ईरान की तरफ से आए,
1: सभी संभावनाएं
0: अमेरिका की तरफ से आए, लेकिन पिछले 24 घंटे में फिर एक बार कहीं ईरान ने कुछ हमला किया तो कहीं अमेरिका और इजराइल ने उसका कोई जवाब दिया, तो वो उसका जो असर है वो सीधे तौर पर बाजार में देखने को मिलता है। और यही एक कारण है कि लगातार उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिलता रहा।
2: विशाल, आप जो लगातार उतार चढ़ाव की द वॉलेटिलिटी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी, how crucial has been the role of the DIIs and the retail investors? You know, because as we've been noticing, you know, a lot of observers have been saying this, that unlike the last time when there was a economic, you know, global economic crisis, if we talk about 2008, or thankfully the Indian markets are not, you know, behaving in that in that drastic of manner as that it happened then. So how important, how crucial has been the role of the DIIs and the retail investors?
0: Okay, we've spoken about DIIs, yes, and retail investors quite a number of times, if yes, I remember, and every time we come to this conclusion that ultimately the bedrock of our stock market or Sensex, whatever we want to call it, or the economic good health is of course domestic investors. Yes. But let's understand it from a different point of view. You know, every time we talk about DIIs or retail investors, we talk about those numbers as to how much has DII invested, yes, how many retail investors are trading. Let's look at what, you know, what it transpires into the market. So let's look at this week's structured shapings or happenings, okay, within the market. Now today's Friday, last working day of the market.
2: Yes.
0: Markets have come to a close today and now they'll reopen on Monday only. All of us know that. So in these 5 days, how it has shaped, you know, and that is where we would know DIIs and retail investors' role. Now, almost 14 out of the 16 major, sectors, mm-hmm, the indices on the BSE or, yes, NSE have performed well. They're in positive throughout the week, despite the fact that today there has been a sharp decline.
2: Yes.
0: If you look at the small cap, there has been a rise of approximately 4%. If you look at the mid cap, there's a rise of approximately 3%. I don't have the exact numbers, maybe, okay, 3.6 or 3.5. Now, how does that happen? Is it happening because of the FIIs? Is it happening because of the because of the foreign investors or maybe some other big names? No, the bedrock is small caps, mid caps. Right. You know, all these 14 indices. Of course, DIIs and retail investors, retail traders as well. That is how the market work. And you mentioned as to how the comparison is. And let's, yes, clearly look at the comparison. Even today, the slide in the Indian market is nothing as compared to the kind of slide which we have witnessed in other Asian markets as,
2: right,
0: well. So of course there will be tailwinds, global tailwinds as well, which our markets will have to deal with, but
2: yes,
0: largely we land safely on the cushion, which is in fact DIIs and retail traders.
1: Aur khabron par vivechna karne ke liye aapke paas dobara lautenge Vishal, usse pehle shrotaon aaiye rukh kare Asia aur Europe ke bazaar ki taraf. आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में मिलाजुला रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 1%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.5% और जापान का निके 0.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स सपाट रहा और श्रोताओं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी में 0.1% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं बात अगर यूरोपीय सूचकांकों की करें तो यहां पर गिरावट देखी गई। फ्रांस का कैक 1.2%, जर्मनी का डैक्स 1% से अधिक और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% नीचे कारोबार करता नजर आया।
2: The Wall Street ended lower yesterday as crude oil prices paired early losses while investors awaited further developments in the ongoing US-Iran peace talks. Among the major indices in the US markets, the Dow Jones Industrial Average declined by more than 0.6%, the S&P 500 lost nearly 0.4%, and the Nasdaq Composite Index dipped over

0: है कि अगर कोई भी ग्लोबल क्राइसिस है या कोई भी मुसीबत का समय आता है तो तब पता चलता है कि सोना कितना सोना है। तो सीधे तौर पर जिस तरह से जो सोने की कीमतें हैं अगर पिछले कुछ हफ्तों के लिहाज से अगर हम देखें तो एक सीधा इंडिकेटर है, यानी कि सेफ हार्बर है, ना केवल इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी। और धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी ज़रूर दिखेगी, बहुत तेज़ गति से नहीं दिखेगी लेकिन धीरे धीरे दिखेगी। और मुझे लगता है कि जो कि सोने का असली रंग हमेशा रहता है कि आप जब ज़रूरत हो तब आप वहाँ सोने की तरफ मूड रुख करिए, वही सामने दिखाई दे रहा है।
1: कुछ सेंट्रल बैंक जो हैं वो सोना बेच भी रहे, जैसे कि टर्की है, अज़रबैजान।
0: देखिए उनके अपने कारण है, अगर मैं इसके बनिस्बत आपको उल्टा मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ महीनों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चीन ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा है। तो अगर और भी कई ऐसे देश हैं जो लगातार सोने की खरीद कर रहे हैं, तो अगर सेंट्रल बैंक्स भी ऐसे हैं, यानी कि और कई देश तो ऐसे हैं जो अपना सोना, फ्रांस की अगर हम बात करें तो उन्होंने अमेरिकी वॉल्ट से सोना निकाल के अपने पास रख लिया है। तो यानी कि सीधे तौर पर दर्शाता है कि सोने की चमक कम नहीं हुई है और ना ही होने वाली,
1: मगर ये स्थिति की नजाकत है।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद विशाल कार्यक्रम में आने और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।
2: नमस्कार। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Senior BJP leader Subendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with a host of union ministers and several chief ministers from BJP-ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has sought support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, both having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. Our correspondent reports VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nainayat Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results. Interacting with the media, he said that the BJP does not wish to align with TVK in any way. Somnath Amritpur will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan, Somnath. Speaking to the media, Gujarat Minister Jitu Bhai Vaghani said the Prime Minister will lead a 1 kilometer long mega road show from the Triveni helipad to the statue of Veer Hamirji Gohil. Prime Minister Modi will also perform the Kumbha Abhishek, Dhwaj Puja and Mahapuja at the Somnath Temple.

0: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
3: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहाँ आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। क्या जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
1: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता।

0: पार्टी, क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है। जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेके घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
0: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ करना
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
2: अनुबल जी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला, जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी
1: जी,
2: पिछले चुनाव से पहले आए थे, और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया, और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है, उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी
1: जी,
2: उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे, और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की, जिसके वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बात, जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितने फर्जी वोटर्स, घोस्ट वोटर्स भी निकल गए। पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं, उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
1: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में, इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
3: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है, वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
1: जी।
3: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे वो तो कभी पकड़ा नहीं गए, तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी, लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, April 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वक्फ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं तक सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
1: जी, जी।
3: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
1: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
4: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी, सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
1: मैं किया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
0: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हम लोग पीछे जा रहे थे, तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति दे के गए हैं, पहला बात। दूसरी बात ये कि 45 दिन के अंदर जो सेवंथ पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका डीए इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बैनर्जी जी वो जनता के पैसा टैक्स की पैसा खर्च करके वो डीए बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
1: जी।
0: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है, हमारा बंगाल के जो टैलेंट है इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है
1: जी।
0: क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है जीडीपी है बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं और एक दिन में तो नहीं होगा ये, तो कोई एक महीना में भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार, और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूंग जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है
1: कि
0: पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
1: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
2: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
1: जी,
2: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाली थी ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई यही नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिए पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़ी थी सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते हैं बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार पुलिस कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे इलेक्शन के लिए। देखिए एक चीज बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई ब्रजा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उसपे आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
1: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बैनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
3: देखिए ममता बैनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए, तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बंगला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और किया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिपेक्ष में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
3: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: सुर्खियों में

शाम के 7:25 हुए हैं। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़ चुके हैं महफिल जिसका नाम है सांझ ढले। और सांझ ढले की आज की इस खूबसूरत महफिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं संजीव अग्निहोत्री।

जी अभी रात ढलने में तो वक्त है और चांद छुपने में भी वक्त है, लेकिन शाम हो चली है और शाम होते ही हम सब अपने अपने काम से अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, इस आशा विश्वास के साथ कि आज का जो दिन हमारा गया और उसमें कुछ कमी पेशी रह गई तो कल उसको हम उस काम को ज़रूर पूरा करेंगे। और यही सोचते सोचते हम सब अपने अपने घर की तरफ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि मंजिल जल्दी तक जल्दी जल्दी पहुँचें। और इस जल्दबाजी में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत से ट्रैफिक रूल्स हैं जिनका पालन हमको करना चाहिए, हम जाने अनजाने उनका उल्लंघन कर बैठते हैं, कभी रेड लाइट जम कर जाते हैं, कभी ज़ेब्रा लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है, या हम रॉन्ग साइड निकलने की कोशिश में जल्दी जल्दी चलते हैं तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो ये सब चीज़ें जब हम करने की सोचते हैं तो सोचिए कि जो वक्त आप सोचते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे वो दुगना हो जाता है, क्योंकि इन सब बाधाओं को पार करने में फिर आपको तकलीफ़ भी होती है, दूसरों को भी तकलीफ़ होती है। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना होने दें, आराम से जाइए, सुनिए हमारा चैनल 100.1 AIRFM गोल्ड को, गाने सुनते रहिए और आराम से गीत सुनते सुनते पहुंच जाइए अपनी मंजिल की तरफ।

जी हाँ, वाकई बहुत आसान होता है कहना कि भूल जाओ, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम भूलते नहीं हैं। लेकिन आजकल जो एक समस्या हो रही है कि हम सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और हम बहुत सी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं क्योंकि हम सब चीज़ों को उसके अंदर फीड करते जाते हैं। और कोई भी कुछ पूछता है तो तुरंत उसको हम ऑन करके उसमें से निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, क्या बातें हैं, क्या नंबर है, क्या कुछ लिखा है। लेकिन इससे हमारी जो भूलने की क्षमता है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम लिख के अब याद नहीं रखते। पहले हम लोग लिखते थे कि किसी के भी नंबर हैं, डायरी में लिख लिया, किसी कॉपी में लिख लिया, लेकिन अब वो सब चीज़ें मोबाइल में फिट होती हैं। और यकीन मानिए, अगर आपके घर में 4 या 5 लोग हैं और सबके पास मोबाइल है तो आपको हर एक के नंबर भी याद नहीं होंगे, जबकि आप उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये एक आदत सी बनती जा रही है हमारी भूलने की। तो लिख के, कहा जाता ना छात्रों को भी कि लिख के पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा। और आप भी सोचिए कि हम लोग जो आजकल मेल कर देते हैं कोई भी चिट्ठी या कोई भी बात को किसी के लिए तुरंत पहुंच जाती है, कभी सोचिए कि कभी आपने जो ख़त है किसी को कब लिखा था, आखिरी बार सोचिए कब लिखा था।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सर फिरोजी। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मैराथन में विजय रही प्रतिभागी ने अपने विचार साझा किए।
5: मेरा नाम भूमिका वार्षने है। मैं अभी डिप्टी कमांडेंट के पद पे कार्यरत हूँ CISF में और पार्लियामेंट सिक्योरिटी में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मैराथन में पार्ट लेके, और बहुत ही यूनिक डिस्टेंस था 3.5।

0: क्रिएटर्स का, जिसको मुझे करने में बहुत मजा आया एंड मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे जो है इसमें प्राइज भी मिल गया, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इस ऑडिट का उद्देश्य स्कूलों में मौजूद कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। यह निर्णय रूपनगर स्थित राजकीय सर्वोदय विद्यालय के निरीक्षण के बाद लिया गया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कक्षाओं में विद्यार्थियों से बातचीत कर पेयजल, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता और गर्मी से बचाव की व्यवस्थाओं सहित शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से जरूरी सुधार कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली के विकास मंत्री और करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा ने आज सोनिया विहार में 70 लाख रुपए की लागत से सड़क और नालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र में तैयार लिंक गलियों का भी लोकार्पण किया। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान श्री मिश्रा ने कहा कि करावल नगर क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उन्होंने बताया कि सोनिया विहार में लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और सभापुर में भी जल्द यह परियोजना शुरू होगी। इससे जल भराव और गलियों की समस्या दूर हो जाएगी। श्री मिश्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में विधायक और पार्षदों के पास विकास कार्यों के लिए हमेशा फंड की कमी रहती थी, इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम पार्षदों को क्षेत्र के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का फंड देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, पुस्ता सड़क को बेहतर बनाने और क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए लगातार काम कर रही है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को नई दिल्ली में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख ध्यान बाढ़ का पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर रहेगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में वृद्धि करने पर भी चर्चा होगी। बैठक में सामुदायिक जागरूकता, जानमाल का नुकसान रोकने के लिए आसान कार्यक्रम तथा आवश्यक राहत और चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर 14 आरोपियों को गीता कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह ऑनलाइन नौकरी दिलाने, वर्क फ्रॉम होम और हाई रिटर्न का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। आरोपी सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल और टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार मामले में अब तक 8 करोड़ से अधिक रुपए की ठगी के लिंक सामने आए हैं। आगे की जांच जारी है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्कूली विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क प्रकोष्ठ और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार यातायात व्यवहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि 18 मई से 5 जून तक 4 यातायात प्रशिक्षण पार्क में ग्रीष्मकालीन शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आज राजधानी में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए सड़क प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रोड रेडार मिशन के अंतर्गत दिल्ली की लगभग 18,000 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण हॉटस्पॉट, धूल, कचरा और खुले में जलाने जैसी गतिविधियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। इसके लिए हर जिले में 13 फील्ड सर्वेयर तैनात किए गए हैं, जो रोजाना सड़क सर्वे कर MCD 311 ऐप के माध्यम से शिकायतें दर्ज करेंगे। दिल्ली नगर निगम की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज शाहदरा के रामनगर वार्ड का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और जन सुविधाओं का जायजा लिया। उप महापौर ने अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों पर नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, जिससे क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके। दिल्ली विधानसभा की यूथ आउटरीच पहल के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इससे विद्यार्थियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं और विधायी प्रक्रिया को करीब से समझा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा परिसर, अभिलेखीय दस्तावेजों और शताब्दी यात्रा कॉफी टेबल बुक का अवलोकन किया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। इन विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शिक्षकों को सुबह 7:20 से 11 बजे तक स्कूल में मौजूद रहना होगा। प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर आज दिल्ली नगर निगम की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री वाही ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजारों, झुग्गी, बस्तियों और धर्मस्थलों जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हर 15 दिन में नियमित कीटनाशक दवा का छिड़काव कराया जाए। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति धीमी रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में ITO, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइंस, पटेल नगर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय विमान कंपनी इंडिगो इस वर्ष 15 जून से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। इस हवाई अड्डे से किसी विमान कंपनी की ये पहली उड़ान सेवा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश भर के 16 से अधिक शहरों से सीधी उड़ान के माध्यम से जोड़ेगी। इनमें बेंगलुरु और हैदराबाद महानगरों के साथ साथ अमृतसर, चंडीगढ़, धर्मशाला, जयपुर, लखनऊ, नवी मुंबई और श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। 15 जून को पहली उड़ान लखनऊ से नोएडा के लिए होगी। ये उड़ान लखनऊ से सवेरे 7:05 पर रवाना होकर सवेरे 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी। नोएडा से बेंगलुरु के लिए भी पहली उड़ान शुरू की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों से लोगों के संपर्कों को सशक्त बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की परिकल्पना विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच विचार विमर्श और परस्पर समझ को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। युवा संगम शिक्षा तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार के लिए दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ मैं जया भारती।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्राथमिक स्वास्थ्य टीमों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सुदृढ़ करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समग्र और जनकेंद्रित

समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी ने अपनी विशिष्ट सेवाओं के 90 वर्ष पूरे होने पर आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निकम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवाद फोटो सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर 63 रन बना लिए हैं। चीन के शंघाई में तीरंदाजी

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर वक्त हुआ है 8:10 और महफिल सज गई है मधुरिमा की। इस महफिल में हम बात करते हैं शास्त्रीय रागों और उन पर आधारित जो हमारे फिल्मी गीत हैं उनकी। तो इस महफिल में आपका स्वागत अभिनंदन है एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री। शुरुआत करते हैं राग बागेश्वरी पर आधारित एक खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, अगर संगीत की परिभाषा की बात करें तो रंजयति इति राग कहा जाता है। इन शब्दों में की जाती है, जिस क्रिया से मनोरंजन होता है उसे राग कहते हैं। संगीत के सात शुद्ध, चार कोमल और एक तीव्र स्वर मासुरों पर संगीत की पूरी दुनिया आधारित है। तीन सप्तकों में घूमते इन सुरों के बल बूते पर मन की विभिन्न अवस्थाओं, भाव भावनाओं, दिन के विभिन्न समय और ऋतुओं के अनुकूल विभिन्न स्वरों की रचना करके और उनके प्रयोग के बारे में कुछ नियम बना के रागों की निर्मिति की गई और स्वरों को धीमी गति से आला, बाद में क्रमवार तेज गति से तान, सिलसिलेवार किसी अनुकूल विषय पर पद्म रचना के माध्यम से वाद्य यंत्रों की संगत में प्रस्तुति करने की कला ही राग कहलाती है। और इन्हीं रागों पर आधारित हम कुछ गीत लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, CBSE नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

मधुरिमा की महफिल सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। संजीव अग्निहोत्री के साथ हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों की। और अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो राग भैरवी पर आधारित फिल्म बैजू बावरा से है।

आपने ये गीत सुना फिल्म बैजू बावरा से, और इस गीत के साथ ही आज की ये महफिल है मधुरिमा की हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिलहाल संजीव अग्निहोत्री को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 पर।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो आज का दिन बेहद अच्छा है भारत के लिए, और अच्छा ही रहता है अगर स्पोर्ट्स खेल जगत में हम अगर देखें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे और सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तो आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी। कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत की महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, और आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में मैराथन का आयोजन किया। तो शुरुआत करते हैं हम आईपीएल क्रिकेट से, जो कि दिल्ली में ही चल रहा है, और दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अभी मुकाबला जारी है। अगर ताज़ा हालात देखें तो 13 ओवर चल रहा है, 5 विकेट गिर चुके हैं, दिल्ली 91 रन बनाई हुई अभी तक, और अंक तालिका में देखें तो दिल्ली 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। दोनों ही टीम के पास हार की कोई गुंजाइश नहीं है।
1: मुझे लगता है कि जीतना भी जो है वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाला मामला है एक तरह से, क्योंकि प्लेऑफ मतलब मैथमेटिकली आप किसी टीम को बाहर नहीं बोल सकते हैं, पर प्लेऑफ की दौड़ से एक तरह से बाहर ही हैं दोनों ही टीमें। पर डीसी के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि घर पे खेल रही हैं और चाहेंगी कि घर पे कम से कम एक जीत दर्ज करें, पर जिस तरह से इस साल का पूरा IPL गया है दोनों ही टीमों के लिए, मुझे लगता है कि जीतना जो है, जैसा मैंने कहा, वो प्लेइंग फॉर प्राइड वाली चीज़ है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ एट स्टेक नहीं है। हाँ, हमारे चीफ कोच साहब ज़रूर मैच देख रहे हैं तो उनको इम्प्रेस करने की ज़रूर एक कोशिश हो सकती है कुछ भारतीय खिलाड़ियों की आने वाले कुछ समय में भारत की टीम में अपने अलग अलग फॉर्मेट्स में, स्पेशली T20 में अपनी दावेदारी पेश करने का।
0: बिल्कुल, और अगर आज कोई भी टीम हारती है तो फिर वो नॉकआउट में नहीं जा पाएगी। और कल के मुकाबले में देखिए तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया। पूरे मैच का हाल जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत शानदार रही। बारिश से प्रभावित मुकाबला डकवर्थ लुइस के चलते 19-19 ओवर का कर दिया गया। LSG ने 3 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए। मिचेल मार्स ने 56 गेंदों में 111 रन की शानदार पारी खेली। DLS के तहत मिले 213 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जैकब बैथल और विराट कोहली दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। बीच के ओवरों में देवदत्त पडिकल और कप्तान रजत पाटीदार ने मोर्चा संभाला। पडिकल ने 34, वहीं रजत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में 61 रन की दमदार पारी खेली। अंतिम ओवरों में टिम डेविड ने 17 गेंदों में 40 जबकि कृणाल पांड्या ने 16 गेंदों में 28 रन बनाए, पर टीम को जीत नहीं दिला सके। गेंदबाजी में LSG की ओर से प्रिंस यादव ने 3 विकेट चटकाए। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: 9 विकेट कह दिया था हमने, माफ कीजिएगा, 9 रन से हराया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लखनऊ सुपर जायंट्स ने। तो कल का मैच बेहद रोमांचक रहा, भले ही बारिश ने खलल डाली।
1: उस खलल की वजह से मुझे लगता है LSG को फायदा भी हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैच जितना देर से जाता है उतना जो स्टार्ट स्टॉप मैचेस होते हैं वो सबसे ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के लिए, पब्लिक के लिए तो होता ही है, दर्शकों के लिए, पर खिलाड़ी के

0: लिए भी बहुत इरिटेटिंग होता है कि आप खेलने उतरते हैं, थोड़ी सी थोड़ा सा वार्म अप होते हैं, तैयार होते हैं और आधा 15-20 मिनट आप खेलते हैं, फिर बारिश आ जाती है और वो बारिश भी ऐसी होती है जो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मैच रोकती है। तो आप 8 बजे खेलते हैं, फिर आपका मैच रुक जाता है, फिर 9 बजे शुरू होता है, फिर आप कुछ ओवर खेलते हैं, फिर 10 बजे शुरू होता है, मैच रुक जाता है। तो किसी भी टीम के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है जो टीम चेस कर रही है उसके लिए भी चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं, बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, कंडीशंस की वजह से, टाइम की वजह से, हर चीज़ की वजह से। उसके बावजूद जिस तरह की शुरुआत आरसीबी को मिली थी, बहुत तेज़ी से उनके पहले 2-3 विकेट निकल गए थे, तो उसके बाद आपने 203 के आसपास 203 का टोटल खड़ा करना, वो भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात थी आरसीबी के लिए। और जो डीएलएस की बात अक्सर होती है कि एक फॉर्मूला जरूर है लेकिन आज तक किसी को समझ आया नहीं है, 209 एलएसजी ने बनाए थे लेकिन क्योंकि आधा मैच उन्होंने 20 ओवर के हिसाब से खेला था और बाकी आधा जो है वो 19 ओवर के हिसाब से हुआ था, तो जो फाइनल टारगेट था वो उनके टोटल से भी 4 रन एक्स्ट्रा था, 213 का मिला था उनको। तो ये सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। फिर भी अगर जैसे मैंने कहा, अगर ऊपर के आपके 2-3 जो बल्लेबाज हैं वो अगर 5-5, 10-10 रन भी और बना लेते या थोड़ा सा बेटर कर जाते, जिसमें सबसे बड़ा विकेट जो था वो शायद विराट कोहली का ही था क्योंकि अगर वो रहते तो इतना लंबा नहीं जाता, वो पहले मैच खत्म भी कर सकते हैं, उनमें इतनी है ताकत, इतनी क्षमता है उनकी। तो बहुत ही दिलचस्प मैच था लेकिन दोनों ही टीमों के लिए, हालांकि एलएसजी बहुत खुश होगी कि बिल्कुल लास्ट चल रही थी तो 2 पॉइंट जो मिले वो बहुत जरूरी थे उनके लिए और वो भी घर पे खेलते हुए, कि एकाना पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस साल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। पर टीमों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग जरूर होता है जब ऐसे कंडीशंस में आपको परफॉर्म करना पड़ता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल, पहली बार लखनऊ ने अपने घरेलू सरजमी पर जीत भी हासिल की है, तो अब पूरा का पूरा आईपीएल ही इस बार काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है।
0: जी,
1: अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप की। चीन के शंघाई में चल रहा है दूसरे चरण का मैच है। रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पदक की उम्मीदें बरकरार रखी है। सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, वहीं साहिल जाधव ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिमरनजीत ने चीनी ताइपे के फोंग यू झू को 6-0 से हराया, जबकि साहिल ने रोमांचक शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराकर कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो अगर हम देखें कि पूरा का पूरा ये जो हमारा पारंपरिक रूप से भारत की ताकत मानी जाती है तीरंदाजी, और इसमें जब पुरुष महिला और मिश्रित यानी कि मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में भारत पोडियम पर जगह बनाने में नाकाम रहा था, तो लेकिन जब टीम स्पर्धाओं में मिले इस हार के बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत स्पर्धा में हमारे इन खिलाड़ियों ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है,
0: उससे बड़ी बात, ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो नाम हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, जो आपके एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, उनकी जगह जो यंगस्टर्स हैं, जो पिछले कुछ समय में ही जिन्होंने भारत के लिए खेलना शुरू किया है, जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब चाहे वो तरुणदीप राय हों या धीरज भी यंग ही है लेकिन एक्सपीरियंस उनको हो चुका है, या दीपिका कुमारी हों, ये बहुत सालों से भारत के लिए खेल रहे हैं और इनके इनके टैलेंट पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, कोई शक नहीं है। पर हमें अब आगे देखना चाहिए, हम पीछे देखते हुए नहीं चल सकते हैं, और यहाँ पे भी जो सिमरनजीत है वो सिर्फ 3 पॉइंट से क्वालिफाइंग में दीपिका से पीछे रह गई थी टीम में आने से, तो इंडिविजुअल में उन्होंने प्रूव किया कि वो भारत का भविष्य है आर्चरी के हिसाब से, और वो मुझे लगता है क्योंकि इस साल आगे अभी हमारे पास एशियन गेम्स भी है जो बहुत जो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और जो वर्ल्ड कप फाइनल्स होते हैं या वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होते हैं वहाँ पर इतना आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि जस्ट कि शूटिंग या वर्ल्ड कप में शूटिंग या आर्चरी में साल में 4 वर्ल्ड कप होते हैं, तो हर फेज में जो बाकी के कंट्रीज भी हैं, हमारी भी, हमारे भी जो फेडरेशन है वो आपको मिक्स एंड मैच करके ही खिलाती है, ताकि जो बड़े टूर्नामेंट है वहां के लिए आपको अपने बेस्ट खिलाड़ी मिल सके। और वो टेस्ट मुझे लगता है एशियन गेम्स में ही होगा। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उससे, चाहे वो साहिल हो या सिमरनजीत हो,

0: को कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, पर ये पहली ही सीढ़ी है अभी आगे बढ़ने के लिए। अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है इन लोगों के लिए।
1: बिल्कुल, अभी आपने जिस तरह से नाम लिया धीरज का और या फिर बाकी दीपिका का, तो इन खिलाड़ियों से हमें काफी उम्मीदें थी और ये आगे नहीं बढ़ पाई और उसके बाद हमें ये नए यंगस्टर्स देखने को मिल रहे। तो कहते हैं ना कि खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है और ये हमें देखने को भी मिला है, भले उनसे उम्मीदें नहीं थी लेकिन ये हमारे भविष्य बनकर उभरे हैं। तो बता दें सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की विश्व नंबर एक के खिलाड़ी कोंग चेओंग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिरार्ड का सामना करेंगे और दोनों ही खिलाड़ियों के लिए चुनौती काफी भारी रहेगी।
0: आसान बिल्कुल नहीं होगा, खासकर कि सिमरनजीत के लिए, क्योंकि कोरिया का एक तरह से राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। वहां पे प्राइमरी स्कूल से आप शुरू कर देते हैं और बहुत सीरियसली लिया जाता है, और टीम इवेंट में कोरिया भारत से जिस तरह से हारी है महिलाओं से, कहीं ना कहीं उनको भी ये प्रूव करना होगा कि वो जो हार थी वो एक फ्लूक हार थी, क्योंकि वो बहुत सीरियसली लेते हैं आर्चरी को, जैसा मैंने कहा। तो आसान बिल्कुल नहीं होगा, और कंपाउंड में भारत की जो भारत के तीरंदाज हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, पर फ्रांस हमें भूलना चाहिए कि कंपाउंड में अच्छी बहुत स्ट्रांग टीम है। फ्रांस को लाइटली लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा वहां पे।
1: बिल्कुल, दोनों ही के सामने चुनौतियां भले ही मुश्किल है लेकिन दोनों ही विश्व कप में अपना पहला पदक जीतने से सिर्फ एक जीत ही दूर है। और हम तीरंदाज की बात कर रहे हैं तो निशानेबाजी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने हरियाणा के रोहित कन्यान की कड़ी चुनौती को पार करते हुए भोपाल में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भले ही ये हमारा घरेलू मैच हो, घरेलू टूर्नामेंट हो, फिर भी हमारे खिलाड़ी हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे अपने पारंपरिक खेलों में।
0: ये घरेलू जरूर है लेकिन सुरेंद्र सिंह जो कंपटीशन है वो बहुत ही प्रेस्टीजियस माना जाता है। कुछ ऐसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जो जहां पे परफॉर्म करना और जहां पे अच्छा प्रदर्शन करना एक प्रेस्टीज की बात मानी जाती है, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत मजबूत होता है, बहुत और नए खिलाड़ी बहुत निकल के आते हैं, जिसमें सुरेंद्र सिंह मेमोरियल है और मावलांकर टूर्नामेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और रुद्रांश की जहां तक बात है, कहीं ना कहीं उनके अंदर पेरिस के लिए क्वालिफाई ना कर पाने की जो टीस है, जो उनको नहीं जगह मिल पाई थी, वो बहुत उनको अभी भी अंदर से चुभ रही होगी। तो वो चीज उसकी, इसीलिए अगर पिछले 2 साल में आप देखें तो उन्होंने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद यही है कि इसी को आगे लेके चलेंगे और एशियन गेम्स में हमें उनसे और पदक की उम्मीद रखेंगे।
1: बिल्कुल। उधर भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूझो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की और भारत का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना तब पक्का हो गया जब फिलीपींस और चीनी ताइपे अपने आखिरी ग्रुप सी मैच को 12 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से जीतने में नाकाम रहे। तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है भारतीय महिला टीम ने पहली बार इस टूर्नामेंट के, इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर।
0: बिल्कुल, मैं लगातार ये कहती रही हूँ कि अगर हम फुटबॉल की बात करें तो भले ही जो पुरुष फुटबॉल है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा उसके बारे में लोग जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो भारत में हो या विश्व लेवल पे भी हो, पर अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें तो हमारा जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाए तो हमें अपनी महिला टीम से ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए और उनको और ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन है, हर चाहे वो एज ग्रुप में हो या सीनियर लेवल पे भी हो, जिस तरह से हमारी महिला फुटबॉल टीम ने प्रदर्शन किया है, चाहे वो रिजल्ट उनके फेवर में उतना नहीं भी आया हो, पर जो उनका प्रदर्शन है मजबूत टीमों के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास दिलाता है कि अगर उनको उतनी ही सुविधाएं मिले, उतना ही एक्सपोजर मिले और उतनी ही उनको एनकरेजमेंट मिले, तो वो मैं आज भी अब भी ये मानती हूँ कि महिला टीम जो है वो पुरुषों से पहले वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना पाएगी। हमारे देश में उतना नहीं है, पर जो खिलाड़ियों का है, अगर आपको याद हो तो जो सीनियर एशिया कप भी हुआ था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, उसमें मलीशा कल्याण का एक गोल था जो दुनिया भर में वायरल हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता चला। अगर उस ऐसी चीजें और ज्यादा पॉपुलराइज की जाएंगी तो मुझे लगता है महिला टीम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।
1: बिल्कुल, और अगर इस टूर्नामेंट

0: के सेमीफाइनल में पहुंच जाती है भारतीय टीम तो 2026 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में भी भारत का स्थान पक्का हो जाएगा। और अब बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बता देना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। और इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि भविष्य में भी आकाशवाणी की आवाज गूंजती रहेंगी, बिल्कुल गूंजती रहेंगी, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ अपना ये जो सफर है वो जारी रहेगा। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, IUML, VCK और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी BJP के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल RN रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, IUML, VCK और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
4: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, VCK और IUML से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पार

0: दर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
1: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
2: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिदाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी

के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: listeners, welcome to our program Current Affairs. I'm Tina Jha. Today we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padmashri Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath Temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography. And that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से. पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी हैं, वर्षों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
0: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, 4 बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनः निर्माण किया. ये सोमनाथ की बात है
0: जी.
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए. एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमार

0: दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच। और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा, उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई देवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
1: जी।
0: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया। और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है। लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है ऐसा। और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ। तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
1: जी।
0: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से, वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहां शांति होगी या नहीं होगा, वहां युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं। तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं।
1: रीसेंट टाइम्स एज यू लाइक राइटली मेंशनड, गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन रीसेंट इयर्स, वी डू सी दैट देयर इज अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस अबाउट देयर नेशनल आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रूट्स, एंड वी आर ऑल्सो प्रोजेक्ट our heritage globally through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilizational on the global stage?
2: Yeah, in fact, it's very interesting that the question that you asked, the fact that the Somnath temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Chardham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath temple, which has been

0: redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. Okay. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
1: Right.
0: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food. You know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals, and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
0: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians, as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much, and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength, and it is particularly important for the fact that it has helped us endure and, you know, stay strong. It's basically, Tina, our living heritage. It combines ancient wisdom, we can call it by different names, the Vedas, the Upanishads, with modern progress. See, which society can adapt as fast and as beautifully as our Indian society? We go back 5,000 years, and yet we are, you know, today commanding 50% of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर, बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतीकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूँ तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
1: जी।
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। साहब, सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, चार सभ्यताएं, सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए, और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जानें कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। So the story of Somnath Temple, listeners, is not just about a temple rebuilt in stone. It is about civilization, in fact, that refuses to lose its spirit. So 1,000 years after the first attack and 75 years after its restoration, Somnath continues to stand tall as a reminder that India's strength lies not only in its history, but in its ability to rebuild, टू एंड्योर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

0: ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Feng Yuzhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोना ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। समूह ने पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले आतंकी घटना की भी निंदा की। भारत और सिंगापुर ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के साथ संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अस्थिर दुनिया में इन संबंधों का उपयोग करके दोनों देशों के लिए शक्ति और स्थिरता का स्तंभ बनना चाहिए। त्रिनिदाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। ये व्हाइट हाउस की व्यापार नीति के लिए एक बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट।
2: रिपोर्ट के अनुसार अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने 2-1 के विभाजित फैसले में कहा कि प्रशासन 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत शुल्क को उचित ठहराने में विफल रहा। अदालत ने कहा कि सरकार कानून के तहत आवश्यक गंभीर भुगतान संतुलन संकट को साबित नहीं कर पाई। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए आयात शुल्कों के व्यापक सेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। धारा 122 के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में कांग्रेस की मंजूरी के बिना 15% तक शुल्क लगा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना ना करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार ना हो। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की।

0: श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। उन्होंने बताया कि अमरीका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में रात भर चले सैन्य तनाव के बाद नाजुक संघर्ष विराम पर दबाव पड़ गया है। अमेरिका की सेना ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से उसके नौसैनिक बलों पर हमले हुए। अमेरिकी नौसेना ने इसका जवाब दिया। 3 अमेरिकी नौसेना विध्वंसक पोत हमले के बीच सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य से गुजर गए। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ जबकि अमेरिकी सेना ने हमलावरों को भारी क्षति पहुंचाई। वॉशिंगटन का कहना है कि प्रस्तावित शांति ढांचे पर तेहरान की प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए संघर्ष विराम तकनीकी रूप से अभी भी लागू है। ईरान की सेना ने कहा कि अमेरिकी बलों ने तटीय जल क्षेत्र में एक ईरानी तेल टैंकर और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा बंदरगाह के पास एक दूसरे जहाज को निशाना बनाया। रणनीतिक केशम द्वीप और बंदर अब्बास के पास भी विस्फोटों की सूचना मिली है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने शत्रुतापूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी सरकार समाचार एजेंसी के अनुसार तेहरान के ऊपर ईरानी हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इंडोनेशिया में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव दल ने विस्फोट के बाद लापता हुए 20 पर्वतरोहियों के समूह में शामिल सभी जीवित लोगों का पता लगा लिया है। पुलिस के अनुसार 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों का कहना है कि पर्वतरोह पर प्रतिबंध के बावजूद ये समूह ज्वालामुखी पर चढ़ाई कर रहा था। डुकोनो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो पर्वतरोहियों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। ब्रिटेन सरकार के अनुसार क्रूज जहाज MV होडियंस पर हुए हंता वायरस के प्रकोप से 3rd ब्रिटिश नागरिक में भी संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं। मरीज अटलांटिक महासागर के सुदूर द्वीप त्रिस्टन दा कुन्हा में है। इस संक्रमण की पुष्टि 2 अन्य ब्रिटिश पुरुषों में भी हुई है। अब तक हंता वायरस के 5 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जिनमें क्रूज पर सवार 3 यात्रियों में से एक की मौत भी शामिल है। बुल्गारिया की संसद ने रुमेन रादोव को नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। यह फैसला देश में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए लिया गया। 62 वर्षीय श्री रादोव इससे पहले राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं। श्री रादोव ने अपने दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने से कुछ महीने पहले इस वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये बातचीत रूबियो की इटली और वेटिकन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद हुई जब अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ने ईरान में अमेरिका इसराइल युद्ध को लेकर हफ्तों से जारी तनाव के बाद इटली और वेटिकन में 2 दिनों की चली सुलह वार्ता को समाप्त किया। श्रीलंका के पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर अजीत निवाड केबराल के खिलाफ कोलंबो उच्च न्यायालय में एक मामला फिर से दायर किया गया है। श्री केबराल पर आरोप है कि उन्होंने अदालत के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें उन्हें 3 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपए जमा करने थे। CIABOC ने कहा है कि यह मामला श्रीलंका के भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 67(5) के अंतर्गत विवादास्पद ग्रीन बॉन्ड निवेश के मामले में संबंध फिर से दायर किया गया है। बांग्लादेश में आज नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में साहित्य, संगीत और मानवतावादी में उनके अमिट योगदान को याद किया गया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव अपने अपने व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। वहीं साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रेलिया के निको विनर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। सिमरनजीत के सामने अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चियोंग की चुनौती होगी। वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझाकरण बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत और अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% सार्वभौमिक शुल्क को अवैध घोषित किया। इंडोनेशिया में आज सुबह माउंट डुकोनो ज्वालामुखी के फटने से 3 लोगों की मौत हुई। तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आयोजित विश्व कप के दूसरे चरण में महिला रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और श्रोताओं, ये समय है हमारे स्टूडियो से आपके पसंदीदा प्रोग्राम हर श्रृंगार का, जिसे लेकर आज स्टूडियो से साथ हूं मैं आपकी दोस्त रोहिणी। कहते हैं, गर दीदार की तलब हो तो नजरें जमा कर रखनी चाहिए, क्योंकि नकाब हो या नसीब, सरकता जरूर है। तो आइए आज के हर श्रृंगार से नकाब हटाते हैं और आगाज करते हैं आज के हर श्रृंगार का इस प्यारे से अंदाज के साथ, इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है मेरे हुजूर फिल्म से रफी साहब की आवाज में। बोल हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को दिए और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए आगाज करें हर श्रृंगार का इस अंदाज में।

दोस्त जब किसी की आंखों में अपना अक्स नजर आने लगे तो उसके आगे समंदर की गहराई भी आपको कम नजर आने लगेगी। शायद ये जानकर समंदर भी सोच में पड़ जाता होगा कि किसकी गहराई ज्यादा है। जी हाँ, चेहरे पर हंसी छा जाती है, आंखों पे सुरूर आ जाता है दोस्त, जब इस प्यार में महकती आंखों में आप डूबते चले जाते हैं। आइए ये अगला अंदाज आपकी नजर करते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्यार ही प्यार फिल्म से ये गीत है रफी साहब की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन साहब ने।

101.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं हर सिंगार और हर सिंगार में एक प्यारा अंदाज आपकी नजर करेंगे। 90 के दशक से एक ऐसा ही प्यारा सा नगमा आपको सुनवाते हैं जो कि बेहद उम्दा है और बेहद प्रसिद्ध भी रहा अपने जमाने में, आज भी हमारे दिलों की धड़कनों को धड़का जाता है। ये गीत जो कि विजय पथ फिल्म से है, कुमार सानू अलका याग्निक ने इस गीत को आवाज दी। अल्फाज है इस गीत में जमीर कासमी साहब के। जी हाँ, आप जान ही गए होंगे इस गीत में संगीत जो है वो अनु मलिक साहब का है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत, ये प्यारा अंदाज।

कहते हैं कि गौर से देखूं मेरी नजरों में भगवान जैसा दर्जा है तुम्हारा। विजय पथ फिल्म से अभी आप ये गीत सुन रहे थे और 90 के दशक का ये बेहद सुरीला बेहद प्यारा गीत अभी हमने आपको सुनवाया। दोस्तों आप सुन रहे हैं हर सिंगार, मैं हूं साथ आपके आपके अपनी दोस्त रोहिणी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कहते हैं नजर से जब नजर मिले तो नजर लग ही जाती है, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से। हम हमारी जिंदगी है, अपना अंदाज है, अपना नजरिया भी रखिए। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, झुक गया आसमां फिल्म से लता जी की आवाज में। इस गीत को बेहद प्यारे सुरीले अंदाज से सजाया शंकर जयकिशन जी ने।

104.1 मेगाहर्ट्ज़ AIR का FM गोल्ड चैनल। और श्रोताओं, आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त रोहिणी। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 10:54। जी हाँ, ये समय हमें इशारा कर रहा है कि आज के हर श्रृंगार को यहीं मैं समेट लूं और आपसे फिर मुलाकात करूं। जी हाँ, 11:10 पर रेडियो नाटक आवाजों का सुनहरा सफर आप सुन सकेंगे और इसके तुरंत बाद गीत मेरे मन मीत लेकर मैं आपसे जुड़ूंगी एक बार फिर। लेकिन फिलहाल आपको छोड़े जाऊंगी इस प्यारे से गीत के साथ। लेकिन दोस्तों, बेहद प्यारे खूबसूरत अल्फाज साथ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं ना, याद आएगी हर रोज मगर तुझे आवाज ना दूंगा, लिखूंगा तेरे ही लिए हर गजल मगर तेरा नाम ना लूंगा। आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार और फिलहाल आज के हर श्रृंगार में ये आखिरी गीत राजकुमार फिल्म से। ये गीत आप सुनेंगे रफी साहब की आवाज में। इस गीत को बेहद प्यारे उम्दा संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन साहब ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। शोध, आलेख, स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी। ये रूपक उन कलाकारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और अभिनय प्रतिभा से रेडियो नाट्य विद्या को निखारा और पल्लवित किया, और हम इसे उन सभी श्रोताओं को भेंट कर रहे हैं जो हमारे नाटकों को सुनते आ रहे हैं। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं, तब रेडियो नाटक देश में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तब मनोरंजन का प्रमुख साधन वो नाट्य मंडलियां हुआ करती थी, जिनके प्रभाव से रेडियो नाटक भी अछूते नहीं रह सके। इनमें पारसी रंगमंच, नौटंकी और अन्य लोक शैलियां शामिल हैं।
1: देवी, मेरी तपस्या में आखिर कहां कमी रह गई? आज मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ?
2: महाराज, अब आपको भला मैं क्या बता सकती हूँ?
3: अपने मुंह से भला अपनी कैसे कहूँ, अपने मुंह से भला

0: शुरू शुरू में किसी भी नाटककार से रेडियो के लिए नाटक लिखवाना कठिन था, क्योंकि उनकी राय में ऐसा कोई नाटक हो ही नहीं सकता था जिसमें शुरू से आखिर तक बातचीत ही बातचीत हो और सुनने वालों की समझ में ये ना आ सके कि ये बातचीत हो कहाँ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो समय आया जब रेडियो नाटक श्रोताओं को ना केवल समझ आने लगे बल्कि उनकी रेडियो नाटकों में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। आकाशवाणी के जाने माने कलाकार श्री नीरज शर्मा।
1: देखिए, रेडियो नाटक वो फलसफा है जो हमें जीने का पूरा सिद्धांत सिखाता है। हम जो नहीं हैं वो बनकर जी सकते हैं। और एक बड़ी खास बात है, आप फिल्म देखिए, टेलीविजन देखिए और रेडियो सुनिए। फिल्म देखने के लिए आपको कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, टेलीविजन देखने के लिए कुछ टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। टेलीविजन की साउंड ऑफ कर दीजिए आप, पिक्चर कितनी देर देख लेंगे, लेकिन रेडियो, रेडियो के जब आप ऑन करेंगे और उस पर नाटक आ रहा है तो आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रही हो महिलाएं, नाश्ता कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो आप, वो आवाज़ उनके कान में पड़ेगी, उनको सब सुनाई देता रहेगा। तो रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और नाटक उसका जीवन है, उसका प्राण है, जिसको हमने कोशिश की हम लोगों ने जीवंत रखने की और आगे भी रखेंगे।
0: आदिकाल से ही नाटक, जिसे दृश्य काव्य भी कहा जाता है, भारत में प्रधान कलाकृति के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन इस शास्त्र के साथ साथ रेडियो नाटक के अलग अस्तित्व को स्वीकार करना किसी भी लेखक या निर्देशक के लिए आसान नहीं था। शुरू में बम्बई और कलकत्ता के रेडियो स्टेशनों से कभी कभी नाट्य कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उनमें श्रोताओं को उस समय के जाने पहचाने रंगमंचीय कलाकारों द्वारा रंगमंचीय शैली में प्रस्तुत मराठी, गुजराती, बंगला, हिंदी और उर्दू के लोकप्रिय रंगमंचीय नाटक

0: लोगों के अंश ही सुनने को मिलते थे।
1: मैं कुछ अधिक ही बलहीन हो रहा हूँ, आखिर मैं प्रजापालक हूँ, ये मुझे शोभता नहीं है। लक्ष्मण ले आओ।

0: स्टेशन में रेडियो नाटक का सही और पुख्ता उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ के स्टाफ में शामिल हुए। उन दिनों कृष्ण चंदर और सादत हसन मंडो आकाशवाणी के ड्रामा एकांश में काम करते थे। शुरू में नाटकों का लाइव प्रसारण होता था। इफेक्ट्स के लिए नाटक स्टूडियो में पर्दे लटके होते थे, बीचों बीच एक पंखा लगा होता था और भी कुछ उपकरण लगे होते थे। क्योंकि नाटक लाइव प्रसारण होते थे, इसलिए सभी तरह के इफेक्ट्स भी उसी समय तैयार करने होते थे, चाहे वो घोड़े दौड़ने का हो, हवा आने या तूफान आने का। उन दिनों इफेक्ट्स के लिए कुछ रिकॉर्ड्स भी उपलब्ध थे, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट्स स्टूडियो में ही तैयार किए जाते थे।
1: पहले जब रेडियो नाटक लाइव हुआ करते थे, तब की कुछ बातें मुझे याद हैं, मैं सुनाता हूँ। एक प्ले की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तीन कैरेक्टर थे उसमें। दो कैरेक्टर की बातचीत चल रही थी आपस में। बात करते करते किसी झोंक में एक कैरेक्टर, ठीक है ऐसा नहीं हो सकता, ये कहता हुआ एग्जिट मार गया। पैनल पर जो प्रोड्यूसर बैठे थे, उन्होंने कि लाइव प्ले चल रहा है, मैं क्या करूंगा। अचानक ही उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैंने गलत एग्जिट मार दी है, और जो व्यक्ति माइक्रोफोन पर खड़ा था वो भी सोचने लगा कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि आगे तीन चार पेज लंबा सीन था। अचानक जिन्होंने एग्जिट ली थी वो आए, अरे रामलाल जी वो मेरी कैप यहाँ रह गई, देखें कहाँ है। हाँ हाँ ये रखी है, इस कैप के बगैर मैं चल नहीं पाता। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस विषय पर हम बात कर रहे थे उस विषय में ये जोड़कर उन्होंने आगे का सीन शुरू कर दिया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें बताया भी जाता था, हम देखते भी थे कि आकाशवाणी के स्टूडियोज के कॉरिडोर में ब्रॉडकास्ट शुरू होने से पहले यानी 9 और 9:30 के बीच में कलाकार अपने हाथ में स्क्रिप्ट लेकर और पसीने आ रहे हैं और स्क्रिप्ट से मार्किंग करते करते करते करते चले जा रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे रहते थे।
0: रेडियो नाटक की जब हम बात करते हैं तो रेडियो नाटकों में भाषा का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो चीज श्रोता देख नहीं सकता, कानों के माध्यम से एक चित्र की तरह वो उस चीज को देख सके। शब्दों से ही चित्रों का निर्माण करना होता है। रंग रूप की झांकी भी प्रस्तुत की जा सकती है। रेडियो नाटकों की भाषा ऐसी होती है जिससे लगे कि शब्द बोल रहे हैं, चित्रों का निर्माण कर रहे हैं।
1: रेडियो नाटक बहुत ही दिलचस्प विधा है, समझ में आ जाए तो बात क्या बात है, बहुत मजा रहता है। असल में इस वक्त तो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन एक समय था कि जब रेडियो नाटक लाइव होते थे, लाइव ब्रॉडकास्ट होता था। 70s और 80s की बात है कि जब रात को 9:30 नाटक ब्रॉडकास्ट होते थे, तो आमतौर पे घरों में हम लोग क्या करते थे कि घर की लाइट ऑफ कर दी और नाटक सुनने लगे। तो नाटक सुनते हुए ऐसा लगता था जैसे आपके सामने शब्द चित्र बन गया। यही रेडियो नाटक है कि जब आप बोलें तो सुनने वालों को शब्द चित्र बन जाए, चलचित्र की भांति उनके सामने सब उनको दिखाई देने लगे।
0: जब रेडियो नाटक लिखे जाते हैं तो संवादों को कैसे लिखना है, इस बात का खास ख्याल रखना होता है। नाटक के पात्र शब्दों के माध्यम से जो बातचीत करते हैं उसे संवाद कहा जाता है। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो के लिखे नाटक 3 खामोश औरतें का एक अंश।
2: क्यों बहन, सुनी थी आपने इस खामोश औरत की बातें? माफ करना बहन, मैंने वाकफियत के बगैर ही आपसे गुफ्तगू शुरू कर दी। दरअसल उस औरत की बातों ने मुझे बेहद परेशान कर दिया था।
3: नहीं भिन्नो, इसमें माफी की क्या बात है?
2: मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ तशरीफ ले जाएंगी?
3: खंडवा।
2: खंडवा? तो आप खंडवा जाएंगी? ये खंडवा कहाँ हुआ?
3: झांसी के पास।
2: झांसी के पास, अच्छा। आपके साथ कौन है?
3: मेरा भाई।
2: ओह, तो वो स्टेशन पर आपके भाई थे? बड़े कि छोटे?
3: बड़े भाई।
2: क्या बरस बड़े होंगे आपसे?
3: 2 बरस।
2: ओह, और आपका नाम?
3: महमूदा।
2: मेरा नाम शमशाद है।
3: जी अच्छा।
2: आपके भाई साहब

0: नाम?
1: खान महमूद उमर खान।
0: खान महमूद उमर खान
1: जी।
0: मेरे भी दो भाई हैं।
1: अच्छा।
0: एक मुझसे बड़ा, एक छोटा।
2: मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन रंगमंच के लिए लिखा गया था, लेकिन रेडियो के लिए भी मोहन राकेश ने ही उसका रूपांतरण किया।
0: माँ, माँ, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी वर्षा, दूर दूर तक की घाटियां भीग गई और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई बकुल पंक्तियों को देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो कर आ गई हूँ।
2: इस पूरे संवाद में एक तस्वीर सी उभर कर सामने आई है श्रोताओं के सामने। संवाद जब लिखे जाते हैं तो पात्रों के मुताबिक ही लिखे जाते हैं। आकाशवाणी के रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई जानी मानी कलाकार माला कुमार अपने यादों को साझा करते हुए।
0: रेडियो नाटक एक इतना सुंदर गहरा माध्यम है जहां आप अपने तन मन धन से और अपने पूरे आपकी जो अंतरात्मा है उसमें आप लीन होकर अपने संवाद बोलते हैं एक माइक के थ्रू और अपने सह कलाकारों के साथ, जिसमें एक स्टूडियो है और उसके जरिए आप तक सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, एक पूरा नाटक तैयार होता है और एक ये बहुत ही अद्भुत बहुत ही खूबसूरत मीडियम है। और मैं इससे जुड़ने का मुझे जो एहसास है जो एक्सपीरियंस है वो सर आँखों पर और इससे सुंदर मीडियम मुझे कहीं नहीं लगता। सबसे ज़्यादा जो मुझे सेटिस्फैक्शन होता है, इनर सेटिस्फैक्शन, वो एक रेडियो नाटक के माध्यम से ही होता है। और बहुत से नाटकों में किया है, इसमें तरह तरह के भावनाएं, तरह तरह के इमोशंस को अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी सांसों के ज़रिए जो करने को मिलता है वो मुझे लगता है कि कैमरा में भी बहुत कुछ होता है इस तरह से, लेकिन उसमें आपके चेहरे से आपको वो समझते हैं दर्शक कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर रेडियो नाटकों में आपका कोई चेहरा नहीं देखता है, आप कितने भी उम्र के हो, एक जवान रोल आप कर लेते हैं, आप 50 साल की हैं, आप 20 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, आप 20 साल की हैं, 60 साल की नायिका का रोल कर सकती हैं, एक वृद्धा का रोल कर सकते हैं, ये सब आपकी आवाज़ का खेल है।
2: रेडियो नाटक में कई बार नरेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से है जिसमें पात्र वही कार्य संपन्न करता है जो कहानीकार करता है। ये पात्रों का आपस में संवाद नहीं होता बल्कि एक पात्र का ही वक्तव्य होता है। इसके जरिए देश काल का परिचय दिया जाता है, जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं, विवरण दिए जाते हैं, घटनाओं की श्रृंखला को जोड़ा जाता है। नरेटर यानी सूत्रधार, जो बातें संवादों में नहीं आती और जिनका नाटक में आना जरूरी है उन्हें नरेशन में रखा जाता है और सूत्रधार के जरिए वो बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर सूफी कवित्री लल्लेश्वरी पर लिखे गए नाटक प्रेम का सुर आस्था का संगीत, इस नाटक में जहलम और चिनार को नरेटर बनाया गया। जहलम और चिनार सूफी कवित्री लल्लेश्वरी की कहानी के लिए पृष्ठभूमि बनाते हैं, कहानी शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में आकर कहानी की कड़ियां जोड़ते हैं और घटनाओं पर टिप्पणी करते हैं। ललदत्त यानी लल्लेश्वरी हमारी सूफियाना विरासत और भक्ति परंपरा की महान कवित्री, हमारे देश में अनेकता में एकता की कड़ी है लल्लेश्वरी। लल ने अपना फलसफा कश्मीरी भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उनके वाक्यों में सूफी, सनातन पंथ, इस्लामी सिद्धांत और शैवनाद सभी मौजूद थे। लल के लिए प्यार ही खुदा था और आपसी भाईचारा बंदगी। लल ने बंदों से बंदगी, आपसी भेदभाव मिटाकर धर्मों की समानता पर बल दिया।
3: मैं समय की धारा के साथ आज आ पहुंचा हूं धरती के इस स्वर्ग कश्मीर की वादी में। आज इसी वादी में घूमते घूमते मैंने सदियों से बह रही झेलम को देखा तो मन में आया कि जैसे दादी नानी की कहानियां पुरखों से चली आ रही हैं, उसी तरह इस प्राचीन नदी ने भी तो अनेक राजाओं का शासन देखा होगा।

0: अनेक साम्राज्यों का पतन देखा होगा। कितनी महान हस्तियों को कभी शिकारे से इस पार, कभी उस पार पहुंचाया होगा। इसमें चल रहे चप्पुओं की मधुर आवाज ने कितने संगीतज्ञों को उद्वेलित किया होगा, प्रेरणा दी होगी। सदियों से इसके किनारे खड़े वादी की धरोहर, हर मौसम में रंग बदलते चिनार, खुद झेलम के हर रंग से परिचित हैं। साक्षी हैं ये दोनों हमारी वादी की सभ्यता के, इसकी संस्कृति के। इन दोनों का एक अटूट रिश्ता है।
1: अगर रंगमंच या फिल्मों की हम बात करें तो यहाँ पर मूक अभिनय भी हो सकता है, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं है। संवाद ही रेडियो नाटक है। संवाद रहित रेडियो नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस लिहाज से रेडियो नाटक की कला संवाद लेखन की कला है। रेडियो नाटकों से जुड़े अपनी यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी के जाने माने नाट्य कलाकार नीरज शर्मा।
2: मुझे एक प्ले की बात याद है, पंडित दीनानाथ जोशी बहुत सीनियर कलाकार थे, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, और वो अपनी स्क्रिप्ट पे ऐसे मार्किंग करते थे कि दूर से भी उनकी स्क्रिप्ट नजर आ जाती थी कि इसमें क्या लिखा है, पेन से गड़ा कर देते थे। अच्छा, खास बात थी वो उर्दू में लिखा करते थे और उर्दू में पढ़ते थे। तो एक प्ले की रिहर्सल चल रही थी, जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास था धरती धन्ना अपना, मैं था उसमें, सुचित्रा जी थी, वीना जी थी। तो एक कुछ रोमांटिक सीन था, तो मैं और वीना जी हम लोग उस रोमांटिक सीन के रिहर्सल कर रहे थे, तो जरा आवाज़ें हल्की हल्की हमारे मुंह से निकल रही थी। मैं भी उन दिनों बहुत नया था तो बहुत ज़ोर से नहीं बोल रहा था, और वीना जी भी मेरे साथ साथ हल्के हल्के बोल रही थी। पंडित दीनानाथ जोशी दूर बैठे थे, बोले, अरे भाई ज़ोर से तो बोलो, हमें भी तो सुनाई दे, स्क्रिप्ट में कहाँ है। तो डायरेक्टर महोदय बोले, पंडित जी ये सीन आपके सुनने के लिए नहीं है। ये बोला सब में ठहाका गूंज गया। एक दफा की बात है कि एक प्ले रिकॉर्ड हो रहा था, कल नहीं लौटेगा, दीनानाथ जी उसका निर्देशन कर रहे थे, और वो एक भाई बहन की कहानी थी। भाई ने तीज पर बहन को धानी चुनरिया ला के दी, और झूला झूलते हुए बहन धानी चुनरिया के गीत गाती है, भाई उसका रिकॉर्ड कर लेता है। होता यह है कि शादी के बाद वो उसको लड़की को मार देते हैं। तो सीन ये था कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर रो रहा है, और माँ आकर उसे चुप कराती है। तो दीनानाथ जी बोले, भाई नीरज ये सीन हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे जब सिर्फ तुम दोनों हो गए, यानी माँ और बेटा। तो एक खास दिन हमको बुलाया गया, वो रिकॉर्डिंग रख दी गई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको प्ले किया गया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। गोपाल सक्सेना जो थे वो असिस्ट कर रहे थे दीनानाथ जी को, रिकॉर्डिंग शुरू हुई, इशारा मिला और हमने उसको सुनना शुरू किया, और धीरे धीरे उस पर रिएक्ट करना शुरू किया। तो रिएक्शन करते करते, रिएक्शन देते देते सच में रोना आ गया, और वाकई में रो पड़ा उसके अंदर। माला जी आई जो माँ का रोल कर रही थी, माला गुप्ता, उन्होंने मुझे चिपका लिया सीने से अपने, और कहा, नहीं बेटा ये वो तेरी सब कुछ नहीं थी, वो मेरी भी बेटी थी, ये डायलॉग था, ये कह के मुझे चुप कराया। सीन वाइंड अप करके जैसे हमने ग्लास के उधर कंट्रोल रूम में देखा, तो दीनानाथ जी सर पे हाथ धर के बैठे हुए थे, और गोपाल जी अवाक, आंखें बाहर मुंह खुला ऐसे बैठे थे। अब समझ में नहीं आया कि रिकॉर्डिंग हो गई नहीं हो गई। तो मैं कंट्रोल रूम में गया और जाके मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग हो गई? कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा, जी रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक हो गया? तो दीनानाथ जी बहुत ही दुखी मन से मेरी तरफ देख कर बोले, बेटा दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी क्यों, क्या हुआ? कल टेप खत्म हो गया। गोपाल जी की तरफ इशारा करके बोला, मैंने इसे कहा था कि बड़ा टेप ले, टेप खत्म हो गया, अब दोबारा करना पड़ेगा। आप ये मानिए कि घड़ों पानी पड़ गया ऊपर से नीचे तक, कि इतना इमोशनल सीन एक बार जो हो गया वो दोबारा होना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश की, सीन को किया। सीन करने के बाद जब सुनने लगे जाके, तो गोपाल जी एकदम से अपनी कुर्सी से उछल पड़े, कहते मैं जोड़ दूंगा, लास्ट की जो सिसकियां थी मैं उनको जोड़ दूंगा। और गोपाल जी ने वाकई उस सीन को जोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि ये सीन दो पार्ट्स में रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो किस्सा आज भी जब मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि क्या जमाना था। अगर वो नहीं जुड़ पाता तो शायद वो सीन नहीं हो पाता उस तरीके से।
1: रेडियो नाटक और उसके लेखन का सारा दायित्व उसके डायलॉग्स पर ही है, उसके संवादों पर ही होता है। संवादों के माध्यम से कहानी कही जाती है, पात्रों का परिचय दिया जाता है, जरूरत के मुताबिक उनकी रूपरेखा, वेशभूषा, उनका काम जैसी बातों से श्रोताओं को परिचित करवाया जाता है। आसपास के वातावरण का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, पात्रों के भाव और विचारों को बताया जाता है, और उनके आपसी संबंधों पर रोशनी डाली जाती है।
2: रेडियो नाटक सब विधाओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आवाज पे बेस्ड है और ये किसी भी एक्टर की ट्रेनिंग के लिए भी मुझे लगता है कि काफी फायदेमंद है, क्योंकि जब आप सिर्फ अपनी आवाज से खेलकर अपने सारे एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं तो आपको उसकी वैल्यू भी पता चलती है और आपको ये भी पता चलता है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, और ये आपका बाकी विधाओं में भी काम आता है, चाहे आप फिर आप स्टेज पे जाएं, चाहे आप कैमरा के आगे जाएं। और मतलब जैसे खुद का अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे आज तक किसी ऑडियो के आदमी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप अपनी आवाज को थोड़ा सा उठाइए, मैं कैमरा की बात कर रहा हूं। तो ये इसलिए क्योंकि मैं आप आवाज के जरिए अगर आप कन्वे कर पाते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती है।
1: रेडियो नाटकों के अलग अलग रूप हैं, पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, चारित्रिक, मनोवैज्ञानिक वगैरह। मोनोलॉग या स्वगत नाटक। मोनोलॉग का अर्थ है वो नाटक जिसमें एक ही पात्र बोलता है, इसे स्वगत नाटक और एक पात्रीय नाटक भी कहते हैं। इसमें केवल एक पात्र रहता है। आइए सुनते हैं एक पात्रीय नाटक पन्ना धाय का एक अंश।
3: सांझ पड़े नखरे छड़े।
4: पन्ना देख कहाँ है? हाँ,
3: तुम ही अच्छा करने आए हो।
4: क्या करने आया हूँ? मैं उस पीच को नष्ट कर दूंगा। उससे पहले पेड़ बन के वो मेरे रास्ते का रोड़ा बने, मैं उसे समाप्त कर दूंगा।
3: तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते, तुम तो उसके संरक्षक हो। नहीं, मैं उसकी शैया के पास से नहीं हटूंगी।
1: रेडियो से प्रसारित होने वाले नाटकों में पद्य नाटक का भी बहुत अहम रोल होता है। इसे काव्य नाटक या गीति नाटक भी कहते हैं। पद्य नाटक की विशेषता को समझने के लिए गद्य नाटकों और पद्य नाटकों के अंतर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। गद्य नाटकों की अगर हम बात करें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने का माध्यम है, हमारे चिंतन और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है।
3: आइए सुनते हैं पद्य नाटक ब्लैक होल का एक अंश।
5: मैं काल हूं, पता नहीं कब जन्मा मैं, ये भी नहीं जानता कि रहूंगा कब तक। मेरे भीतर छुपे हैं अनंत ब्रह्मांड और उनके असंख्य रहस्य।
6: नहीं पहचाना? अरे, इतने संकेतों के बाद भी आप जान न सके कि मेरा नाम कल्पना है और मैं आपके विचारों को पंख देने आपके पास उड़कर आ गई हूं, इसी अनंत शून्य के अंधकार से। कल्पना तो ईश्वर भी करता होगा और हमारे आपके जैसे साधारण जन भी, मगर ईश्वर की कल्पना थोड़ी विचित्र होगी, है ना? कुछ से कहीं अधिक असाधारण, कहीं ईश्वर ही तो कल्पना नहीं, अर्थात कल्पना का ईश्वर मेरा ईश्वर।
1: जाने माने कलाकार और रेडियो नाटकों से जुड़े हुए श्री योगेंद्र टिक्को अपनी यादों को बांटते हुए।
7: मैं काफी सालों से आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ हूं और कुछ ऐसा भी है कि मैंने बाकी सारे माध्यम में भी बहुत काम किया है, अलग अलग विभिन्न माध्यमों में, टीवी हो, फिल्म्स हो या थिएटर हो, सबसे जुड़ा हूं मैं। मगर जितना सुकून और सुख मुझे आकाशवाणी पे ड्रामा करके मिलता है वो मुझे और कहीं शायद उतना नहीं मिलता, क्योंकि ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है और आसान नहीं है। ये एक तरह से आपकी कलाकारी को मांझता है, आपको परिपक्व करता है, ताकि आप जब आपकी वॉइस एकदम स्ट्रांग होती है, आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो आप किसी भी माध्यम में जाके, चाहे वो फिल्म्स हो, टीवी हो, थिएटर हो, कहीं पे भी जाके आप अपनी कला को और निखार सकते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली कहूंगा कि मुझे अच्छे प्लेस करने का मौका मिला है।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ।
8: वैसे तो बहुत सी विधाएं हैं जहां से हम तकरीबन आर्टिस्ट गुजरे हैं, लेकिन इससे गुजरने पर

0: ये एहसास हुआ कि सिर्फ आवाज़ के माध्यम से और एक ध्वनि का जो एक अलग अपना एक इफेक्ट होता है उसके थ्रू एक कंप्लीट एक दृश्य को पूरे जहन के अंदर उतार के रख देना, मतलब ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम लोग थिएटर में बैठ कर के थिएटर देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल उस तरह का एक मंचन और उस तरह का दृश्य प्रारूप जो है वो मन में और दिमाग में उतरता चला जाता है। हालांकि ये विधा मुझे बाकी विधाओं से थोड़ी सी कठिन सी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें जो एक सुकून और एकाग्रता एक का जो संगम नजर आता है वो अलग तरह का है।
1: कई नाटक संगीतमय नाटक होते हैं जिनमें कहानी के साथ साथ नाटक के साथ साथ संगीत और गीतों का भी मिश्रण होता है जो सुनने में श्रोताओं का मन और ज्यादा लुभाते हैं। आइए अब सुनते हैं संगीतमय नाटक मिर्जा साहिबा का एक अंश।
2: साहिबा से मुझे मिलवा।
3: तो ये बात है, जानती थी, तब से जानती हूँ जब तू मस्जिद से घर लौटता हुआ मासी के घर साहिबा को मिलता था। मैंने तो अल्लाह से कई बार दुआ मांगी कि तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। चल चल मेरे साथ चल।
2: चल मासी चल।

ये था यादों का कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला। आज रेडियो नाटक कितनी सीढ़ियां पार करके यहाँ तक पहुंचा है और श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं।

आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में अभी आप सुन रहे थे रूपक आवाजों का सुनहरा सफर रेडियो नाटक। शोध आलेख स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। गीत मेरे मन मीत लेकर स्टूडियो से एक बार फिर साथ हूँ मैं आपकी दोस्त रोहिणी। वो कहते हैं ना, यूं सजा चांद की झलका तेरे अंदाज का रंग, यूं फजा महकी कि बदला मेरी हमराज का रंग। गीत मेरे मनमीत का आगाज इस प्यारे से अंदाज के साथ, जो कि है दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए शैलेंद्र साहब ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। जी हाँ, इस गीत को आवाज दी लता जी ने।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरी मनमीत का ये प्यारा अंदाज आप तक पहुंच रहा है श्रोताओं। कहते हैं कि छुपाता है बहुत मुझको मेरा साया, मगर फिर भी मैं खुद को रोशनी से दूर जाकर देख लेता हूँ। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये गहरा एहसास आप तक पहुंच रहा है गीत मेरी मनमीत के साथ। आइए अगला गीत सुनते हैं, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से किशोर जी की आवाज में इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और श्रोताओं संगीत बद किया एस डी बहमन जी ने। तो आइए सुनिए प्यारा अंदाज़।

गीत मेरे मन मीत। कहते हैं कि मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता, ये वो एहसास है जो दिलों को धड़काता है। ये अगला गीत, आइए आपकी नजर करते हैं तेरे घर के सामने फिल्म से, रफी साहब की बेहद प्यारी सुरीली आवाज। और इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया एसडी बर्मन जी ने। तो आइए 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनते हैं ये प्यारा गीत का अंदाज।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। बड़ी ही खूबसूरत ख्याल है कि कई बार नापसंद जिंदगी में कुछ मनपसंद लोग, या ये कहूँ कि कुछ मनपसंद जिंदगी का हिस्सा होते हैं जो आपको उम्र भर याद रह जाते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। तुमसे मिलने की तमन्ना बहुत है, लेकिन सुना है हर तमन्ना पूरी नहीं होती। तो श्रोताओं, फिलहाल अगर आपकी ये तमन्ना है कि गीत मेरे मन में तो यूं ही अपना सफ़र तय करता रहे, तो जी हाँ, सफ़र ज़रूर तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए, आज के गीत मेरे मनमीत को यहीं समेटती हूँ। दीजिए इजाजत मुझे यानी रोहिणी को, और फिलहाल सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, ये अगला गीत जो कि आप सुनेंगे, चोरी

चोरी फिल्म से और इस गीत को आवाज दी है लता जी और मनाडे साहब ने। साथ ही इस गीत को आपको बता दें कि लिखा है शैलेंद्र जी ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुनते हैं और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले

0: का पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
0: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आदिलकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मुन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी है कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच के आदेश दिए। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार से सिफारिशें करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरनजीत के सामने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की कांग चियांग की चुनौती होगी, वहीं साहिल सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस गिगार्ड का सामना करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Senior BJP leader Shivendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
0: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

गाना फिल्म से आपने ये गीत सुना शैलेंद्र सिंह की आवाज में। इसे लिखा तो का साथ है। रात की खामोशी में सुरों की महफिल सच चुकी है और हर धुन जैसे दिल के किसी कोने को धीरे से छू रही है।

खिलौने फिल्म से आपने ये गाना सुना येसुदास की आवाज में। इसे लिखा कैफी आजमी ने और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। माना हो तुम बेहद हंसी हो, लेकिन ये भी सच है कुछ लोग अपनी सादगी से ही दिलों पर राज कर जाते हैं। चेहरे की चमक पल भर को भा सकती है, मगर दिल की खूबसूरती उम्र भर याद रहती है।

दादा फिल्म का गाना आपने सुना, येसुदास की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराकर चल दिए। कितनी आसानी से लोग अपने हिस्से की मोहब्बत निभाकर किसी और की दुनिया वीरान कर जाते हैं। कुछ दर्द आवाज नहीं करते, बस रातों की खामोशी में धीरे धीरे दिल को सुनाई देते रहते हैं।

त्रिशूल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज में। साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया खयाम ने। दर्द हो, जुदाई हो, तन्हाई हो, फिर भी मोहब्बत बड़े काम की चीज है। ये वो एहसास है जो टूटे हुए इंसान को भी जीने की वजह दे देता है। मोहब्बत हर बार मुकम्मल हो जरूरी तो नहीं। कभी किसी की यादों के सहारे पूरी उम्र ही कट जाती है, कभी ये आंखों में चमक बनती है, कभी धीमी सी कसक, मगर दिल से पूछिए तो हर धड़कन यही

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, उनमें एक अपनापन और सुकून होता है। उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है जैसे बाकी सब कुछ तीर के लिए रुक सा गया हो।

धर्मात्मा फिल्म का गाना आपने सुना कंचन और मुकेश की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक एहसास है, क्योंकि प्यार होने पर इंसान बदलने लगता है। किसी की छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगती हैं, उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, यहाँ तक कि उसकी खामोशी भी, और कभी कभी उसके सितम भी।

सनम तेरी कसम फिल्म से आपने गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। इसे लिखा गुलशन बावरा ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कुछ मोहब्बतें ऐसी ही होती हैं, उनमें शिकायतें भी होती हैं, दर्द भी, इंतजार भी, फिर भी दिल उसी इंसान से जुड़ा रहता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ नहीं रहता, बल्कि तकलीफों के बीच भी दिल से कभी कम नहीं होता। कभी कभी इंसान टूटता बहुत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी दिल के किसी कोने में वैसी ही रहती है, धीमी, खामोश, मगर बेहद गहरी।

एक दूजे के लिए फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 52 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी

ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और निर्वाचित विधायकों की सूची जारी कर दी गई है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुयाना के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और भारत गुयाना के स्वास्थ्य संबंधों की प्रगति पर चर्चा की। कैरेबियन देशों की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फ्रैंक एंथोनी से मुलाकात की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन ने कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के सूजो में आज भारतीय टीम ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में लेबनान पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

धर्मपुत्र फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। दूर से कोई सुहाना गीत कानों में उतरने लगे तो दिल अपने आप यादों की गलियों में भटकने लगता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जैसे रात की खामोशी में कोई दिल की बात धीरे से कह रहा हो।

शोला और शबनम फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाब ने। कुछ पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं होती, दिल की अनकही तलाश बन जाती हैं। इस एक एहसास में इंतजार भी है, अपनापन भी, और वो हल्की सी उदासी भी जो रात के सन्नाटे में और गहरी लगने लगती है। कभी कभी सामने वाला हमारे भीतर वही ढूंढता रहता है जिसे हम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते।

उस्तादों के उस्ताद फिल्म से ये गीत आपने सुना रफी की आवाज में। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे, ये सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं, एक ऐसी चाहत का एहसास है जो वक्त और फासलों से भी बड़ी लगती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर दौर में, हर हाल में दिल के करीब ही रहते हैं। पुराने गीतों की यही खूबी है, कम शब्दों में गहरे जज्बात उतार देते हैं और सुनने वाला चुपचाप उन एहसासों में खो जाता है।

नागिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, इस पुकार में इंतजार की बेचैनी भी है और मिलन की मीठी उम्मीद भी। रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। पुराने सुरों की यही बात दिल को छू जाती है, वो सीधे एहसासों से बात करते हैं बिना किसी दिखावे के।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पतंगा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी भूल जाने की बातें भी यादों को और गहरा कर देती हैं। इस एहसास में शिकायत कम, सच्ची मोहब्बत ज्यादा महसूस होती है। कुछ रिश्ते साथ रहें या ना रहें, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा अपनी जगह बनाए रखते हैं।

आखिरी दाव फिल्म का गीत आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ये वो एहसास है जब शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सामने किसी की आंखें हों, चेहरे की खामोशी हो और दिल पहले ही सब समझ चुका हो। पुराने गीत बड़ी सादगी से वो बातें कह जाते हैं जिन्हें अक्सर लोग उम्र भर कह नहीं पाते।

परदेसी फिल्म का गाना आपने सुना मीना कपूर की आवाज में, प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। इन शब्दों में एक मीठी सी तड़प भी है और अपनापन भी, जैसे कोई एहसास धीरे धीरे दिल में उतरकर वहीं बस गया हो। कुछ धुनें सुनते ही मन हल्का सा झूम उठता है और रात का सन्नाटा भी सरों से भर जाता है।

यास्मीन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। आंखों में समा जाओ इस दिल में रहा करना, ये सिर्फ किसी को पास बुलाने की बात नहीं बल्कि उसे अपनी दुनिया बना लेने का एहसास है। कुछ लोग इतने करीब महसूस होते हैं कि उनकी मौजूदगी आंखों की चमक और दिल की धड़कन दोनों में बस जाती है। ऐसे पुराने गीत मोहब्बत को बड़े नर्म और खूबसूरत अंदाज में छू जाते हैं।

0: आकाशदीप फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। कभी कोई अनजाने में दिल में ऐसी जगह बना जाता है कि उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी महसूस होती रहती है। पुराने गीतों की यही जादूगरी है, वो अधूरी बातों और अनकहे जज्बातों को भी सुरों में ढाल देते हैं।
1: प्यार पर

सोने की चिड़िया फिल्म से आपने गीत सुना तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज में। साहिर ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री होंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा

0: समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच की शिकायत की है। इस बीच मुन्नारकुड़ी से अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के विधायक एस कामराज के लापता होने और उनके वापस चेन्नई लौटने की खबरों से सियासी सरगर्मी तेज है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने वाला पत्र फर्जी था। उन्होंने यह भी कहा कि एकमात्र विधायक कामराज ने पहले जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे एड्डापाडी पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने के समर्थन में था। उन्होंने कहा कि कामराज जाली पत्र को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप देंगे। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के नेताओं ने 3 दिन के युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी युद्ध के अंत की शुरुआत हो सकता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध विराम आज से सोमवार तक जारी रहेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में बातचीत फिर से शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करेंगे। चर्चा में सीमाओं का निर्धारण, मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए ठोस मार्ग तथा लेबनान की संप्रभुता जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government and the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. earlier,

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। क्या खूबसूरत एहसास था इन पंक्तियों में। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, फिर छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं, और किसी एक शख्स की मुस्कान पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती हो जाती है। जिसे सच्चा प्यार मिल जाए उसे जैसे हर तरफ रोशनी दिखाई देती है, दिल में उम्मीद रहती है, बातों में नरमी आ जाती है और जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं महसूस होने लगती है।

गाइड फिल्म का ये गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। दो लोग जब सच में एक दूसरे के हो जाते हैं तो फिर सपने अलग नहीं रहते, खुशियां, उम्मीदें, मंजिलें सब साझा हो जाती हैं। जिंदगी की राहें आसान हो या मुश्किल, अगर कोई अपना साथ चल रहा हो तो सफर डरावना नहीं लगता।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी किसी की याद, किसी का असर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने ही एहसासों में खोने लगता है। दुनिया उसे दीवानापन कहती है, लेकिन दिल जानता है कि ये किसी के लिए टूटकर महसूस करने की हालत है। जब हर बात में वही चेहरा दिखाई दे, हर धड़कन उसी का नाम लेने लगे, तो फिर इंसान कहाँ अपने बस में रह जाता है।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 47 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आदमी फिल्म का गाना सुना आपने रफ़ी और तलत महमूद की आवाज़ में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। क्या दिलकश एहसास था इन पंक्तियों में, रात की ठंडी खामोशी, मौसम की नरमी और साथ में किसी अपने की मौजूदगी। बस वही पल जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं।

दिल एक मंदिर फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। रात की चांदनी, पास बैठा कोई अपना और दिल में बस यही दुआ कि ये साथ, ये बातें, ये एहसास कभी खत्म न हो। शायद मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप वही होता है जब इंसान वक्त से भी थोड़ी मोहलत मांगने लगे।

ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म से आपने गाना सुना आशा और रफी की आवाज में। एस एच बिहारी ने ये गीत लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। इन शब्दों में बिछड़ने का दर्द भी है और दोबारा मिलने की उम्मीद भी। कभी कभी मुलाकात खत्म होने लगती है लेकिन दिल उसे खत्म मानने को तैयार नहीं होता। तब इंसान किसी वादे का सहारा ढूंढता है, एक छोटी सी उम्मीद कि ये साथ पूरी तरह खोया नहीं है।

फूल बने अंगारे फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी दिल भी कितना बेचैन हो उठता है, न मंजिल की खबर न रास्तों का होश, बस किसी एहसास के पीछे भागता चला जाता है। ऐसे में खुद को समझाना पड़ता है कि हर धड़कन का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ रिश्ते कुछ ख्वाब वक्त के साथ ही अपना मतलब बताते हैं।

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म से आपने गाना सुना रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी किसी का यूं सामने होना सिर्फ मुलाकात नहीं होता, वो एक पूरा एहसास बन जाता है। नजरें ठहर जाती हैं, वक्त धीमा पड़ जाता है और दिल चाहता है कि वो पल थोड़ा और ठहर जाए। शायद इसीलिए दिल कह उठता है, अभी मत जाइए, पहले इस धड़कन को यकीन तो हो लेने दीजिए कि ये सपना नहीं हकीकत है।

दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 33 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही मीना गंधर्व के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में कल उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एड्डापाडी के पलानास्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानी स्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है।

0: सौंप देंगे। उधर केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थ के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक में नियमित प्रवासन मार्गों के विस्तार और विविधीकरण तथा भारत में प्रवासन संबंधी वैश्विक समझौतों के कार्यान्वयन की प्रति भारत की सक्रिय दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 142 रन बनाए, जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। फिन एलन को कोलकाता के लिए 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Senior BJP leader Suvendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata yesterday, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: द इलेक्शन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अराउंड 8 प्रपोजल्स एंड सपोर्टिंग नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड एंड ऑल ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द सेम नेम। सफिशिएंट टाइम वॉज ऑल्सो गिवन फॉर एनी अदर नॉमिनेशन बट नो सेकेंड नेम वॉज प्रपोज्ड। देयरफॉर एज द सेंट्रल ऑब्जर्वर आई डिक्लेयर सुवेंदु अधिकारी एज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव पार्टी।
2: विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations the people of Bengal have placed on them and the mandate they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister designate Suvendu Adhikari said, whatever guarantees have been announced by PM Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Today morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony which was to take place today will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government as he again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. The Indian Union Muslim League, headed by Professor Khadir Mohideen, has said that his party has not given a letter of support to Tamiraga Vetriga Karagam. Meanwhile, the missing MLA, S. Kamaraj of the AMMK from Manarkudi, has returned to Chennai, as said by Mr. T.T.V. Dhanakaran, had returned to formally launch

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 3:11 और 5 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, रात की तन्हाई में अक्सर वो लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जो कभी हमारी धड़कनों के बहुत करीब हुआ करते थे। परदेश जाने वाले तो चले जाते हैं, मगर पीछे छोड़ जाते हैं इंतजार, यादें और ढेर सारी दुआएं। चलिए इसी एहसास को सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में।

प्यार जब दिल में उतरता है ना, तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहती। हर मौसम सुहाना लगने लगता है, हर गीत अपना सा लगता है, लेकिन मोहब्बत का असली मतलब क्या है, शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हर दिल इसे अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से समझता है। तो आइए प्यार के इसी अनछुए एहसास को महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

रात की खामोशी में अक्सर कुछ आवाजें दिल के बहुत करीब आ जाती हैं, किसी की याद, किसी का ख्याल और वो मीठा सा इंतजार जो आंखों को सोने नहीं देता। मोहब्बत अगर दिल से हो तो दूरियां भी उसे कम नहीं कर पाती। फिर हर पल बस एक ही दुआ निकलती है कि वो जिसे हम चाहते हैं हमेशा सलामत रहे।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 3:39 और 41 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। साथियों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। एक मुलाकात, एक मुस्कुराहट और फिर पूरा दिल उसी के नाम हो जाता है। ना कोई शोर होता है, ना कोई ऐलान, बस चुपके से मोहब्बत हो जाती है और तब दिल यही गुनगुना उठता है।

दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी खुशियां आती हैं तो कभी गम भी दस्तक देते हैं, लेकिन जो रिश्ते प्यार से जुड़े होते हैं ना, वो हर हाल में साथ निभा जाते हैं। इसलिए जिंदगी की शिकायतों को छोड़िए और मोहब्बत में जीवन बिताइए, क्योंकि यही पल बाद में सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं।

साथियों, कुछ गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होते बल्कि वो सीधे दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये गीत तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा गीत है जो हमें अपने वतन, अपने लोगों और उन रिश्तों की याद दिलाता है जिनसे दूर होकर भी दिल कभी दूर नहीं होता। एक चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें माँ की ममता, अपनों का प्यार और घर की मिट्टी की खुशबू छुपी होती है। और जब बरसों बाद कोई पैगाम अपने देश से आता है ना, तो आंखें भीग जाना बिल्कुल स्वाभाविक होता है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को हमराही कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले कल कोलकाता में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एड्डापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उधर केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 4:11:05 अरुणिमा कार्यक्रम में मैं हूं आपकी साथी मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, जब हुस्न मुस्कुराता है ना, तो बहारें खुद ब खुद सज जाती है। किसी की मासूम हंसी, किसी की झुकी नजर दिल पर ऐसा असर कर जाती है कि हर तरफ बस वही चेहरा नजर आने लगता है। तो चलिए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत के साथ।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका साथ होना ही बहुत सुकून देता है। ना कोई बड़ी ख्वाहिश रहती है और ना ही किसी और चीज की तलाश। बस एक अपने का साथ हो तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगती है। और ऐसे ही एहसास को बड़े प्यार से ब्याह करता है ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:27 और 54 सेकंड। कार्यक्रम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

परेशानी, बस मन करता है कि संगीत के साथ कदम थिरकते रहें और महफिल यूं ही सजी रहे। तो आइए इस प्यारे से गीत के साथ कुछ खुशी के पल चुरा लेते हैं।

दोस्तों, समय की धारा कभी रुकती नहीं है। लम्हे आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बस जाते हैं। एक प्यार का नगमा है, सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि जिंदगी का आईना है, जो हमें सिखाता है कि रिश्ते प्यार और साथ ही असली दौलत है। यानी कि ये हमें सिखाता है कि प्यार ही असली दौलत है रिश्तों की। तो आइए सुनते हैं इस मधुर और भावुक गीत को।

जब दिल में प्यार हो ना तो इंसान अकेला कहाँ रहता है, उसके साथ चलती हैं यादें, सपने और हवाएं भी। कभी किसी की हंसी हवा के झोंकों में सुनाई देती है तो कभी किसी का एहसास मन को चुपके से छू जाता है और फिर दिल ये कह उठता है।

दोस्तों, जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं है। ये हर दिन एक नया सफर लेकर आती है और जो मुस्कुराकर चलना सीख ले उसे हर रास्ता सुहाना लगने लगता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए आज की हंसी, आज की महफिल, आज के अपने, यही तो जिंदगी की असली दौलत है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अपने दोस्त मीना चौहान को अरुणिमा कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। 5:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम भोर सुहाने में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल कोलकाता में श्री शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों को खारिज कर दिया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापड्डी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने ये खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:11 और 6 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना भागे, लेकिन प्यार के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो उम्र भर दिल में महकते रहते हैं। तो आइए इसी एहसास को महसूस करते हैं, जहां मोहब्बत कहती है कि लंबी जिंदगी से ज्यादा कीमती होते हैं वो पल जो किसी अपने के साथ दिल से जिए जाए।

दोस्तों, हमारी जिंदगी भी किसी किताब की तरह होती है जिसका हर पन्ना नया रंग दिखाता है। कभी खुशियों की रोशनी, कभी संघर्ष की धूल, लेकिन सफर फिर भी चलता रहता है। इंसान अक्सर मंजिल की तलाश में निकलता है, मगर कई बार रास्ते ही उसे जीना सिखा देते हैं। गिरना, संभलना, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ना, यही तो असली कहानी है जीवन की।

दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर लोग चेहरों पर भरोसा कर लेते हैं। एक मुस्कान देखते हैं हम लोग, एक खूबसूरत शक्ल देखते हैं और हम समझ बैठते हैं कि सामने वाला बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा दिखाई देता है। लेकिन सच तो ये है कि चेहरों पर कई नकाब होते हैं और दिल तो कभी झूठ नहीं बोलता है। किसी इंसान की असली पहचान उसकी सूरत नहीं बल्कि उसकी सीरत होती है। चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा साथ रहती है।

दोस्तों, जिंदगी कभी भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी मुश्किलों की लंबी रात, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। हार जाना अंत नहीं होता। कई बार हार ही इंसान को वो सीख दे जाती है जो जीत कभी नहीं दे पाती। ठोकरे हमें गिराने नहीं बल्कि संभल कर चलना सिखाने आती है, और जो इंसान मुश्किलों के सामने मुस्कुराकर खड़ा रहता है ना, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:31 और 22 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।